हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी से, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की नवमी तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 11:58 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजे हैं, माफ कीजिएगा, दोपहर के 12 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं आपकी ईमेल आधारित पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम, आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के लिए हमारे पास तो फरमाइश आई है गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल, ललित जयपाल, और आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आराधना का ये गीत।

आई रुख मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुख मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी।

प्यार की गलियां, बाहों की चलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी।

आए और कब तक मुझे चढ़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगी।

आशिक दिल था और किसी के ये आ जाए क्या है भरोसा आशिक चिल्ल का और किसी से ये आ जाए आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मस्तानी कब आएगी तू जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुक मस्तानी कब आएगी तू जीती जाए जिंदगानी कब

0: हो चलिया।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है कालूराम गांव भदासर से, सुनना चाहते हैं। और आपके साथ हैं सुनने वाले कालूराम भदासर से, गांव भदासर से सुनना चाहते हैं आप सभी। दिल है कि मानता नहीं है फिल्म का, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू का गाया ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है देदूराम गांव लाणेला से। साथ ही इनके साथ सुनने वाले हैं मोहन राठौड़ और सुजाना राम। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आरजू में लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी से। ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म बॉम्बे का ये गीत।

कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल

की सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू मन की गली में महके जो हरदम।

पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंस कर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली।

श्रोताओं, किशोर कुमार को फिल्म प्रेम पुजारी में सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है घनश्याम जैसलमेर से। आपने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ये गीत सुनना चाहा था, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, फिल्म फैशन का ये गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी दुर्ग के अंदर से। मधुबाला व्यास, यशवी व्यास, महक, सोनी, छवि, अदिति, अमीषा और ललिता जी की। आप सभी ने सुनना चाहा था फिल्म फैशन का ये गीत। और अब आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।
2: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से?
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख?
1: क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
5: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
4: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, अंतराल के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हम आपकी पसंदीदा गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है जेपी व्यास, मालती व्यास, नेहा व्यास और हरिओम व्यास की।

और श्रोताओं, अब आइए हम दोनों फिल्म का एक गीत सुनने की फरमाइश हमारे पास आई है आयुष पुरोहित की। तो आइए सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने चुना है फिल्म शोर से, लता मंगेशकर का गाया। और इसे सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है पुष्पा माली, दिग्विजय माली, युवराज माली की। आप सभी ने ये गीत सुनना चाहा है अमर सागर जैसलमेर से, तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म शोर का, लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

मौजों की रवानी है, एक प्यार का नाम।

सवारेगी आरती फिर किसी कन्हैया।

लिख दो

कहा बाहों में बाह डाले हजारों में ले चलू दिल झूम जाए ऐसी।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम रेडियो गोल्डन सिटी से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। कुछ ही पलों में सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंचा। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। वे आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वे कल नई दिल्ली में म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। उनका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति यू मिन आंग की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और अधिक मजबूत तथा प्रगाढ़ होने की आशा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में विशेष स्थान रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS होंगे। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल चौहान को आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदाई समारोह में जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। 4 दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में सरहदी जिले जैसलमेर में रिचार्ज शॉफ्ट संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। इनके जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाई गई। सवाईमाधोपुर के बाडूलास में गंभीर नदी पर बने एनीकट पर जल पूजन और पीपल पूजन का आयोजन हुआ। इसी तरह पाली जिले के सादड़ी में ऐतिहासिक प्रतापगढ़ बावड़ी पर भी कार्यक्रम रखा गया। जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने डायवर्जन चैनल का लोकार्पण किया। इस दौरान निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह PSBA के सहयोग से विकसित किया गया है। PSBA देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। कोटा जिले में पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का प्रकोप दिखाई देने पर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। नगर निगम की बंधा गौशाला और 2 निजी गौशालाओं की 11 गायों में इस रोग की पुष्टि हुई है। संक्रमित गायों को आइसोलेट किया गया है। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर खुशाल सोलंकी ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित पशु का दूध पीने और इनके संपर्क में आने वालों में भी इनकी चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम गठित कर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ। 29 जून तक चलने वाले अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। पाली में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज 30 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कल शाम मौसम में अचानक बदलाव के बाद उत्तर पूर्वी जिलों में तेज अंधड़, बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। राजधानी जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने दो दिनों तक प्रदेश में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं ग्रामीण परिवारों का कार्यक्रम पणिहारी।

0: पणिहारी कार्यक्रम सुन नाली सेंग बहनों ना सुबह बहन रखना गणा राम राम
1: गुंजन बहन गणा सर सुबह बहन थोने और सखियों ने भी गणा गणा राम राम सुबह बहन आज यो थोड़ो सो ठसको होयो को कर
0: कहीं के उना ही ठंडाई सी वाले में लगे ने या तो ना मलू लगे
1: मजा पूरी उबरी कोनी उना ही ठंडाई सो अथे भी जकड़ी जारा
0: अब भले कतो जब तो रखन तो पकड़ में आई जा
1: मौसम री मार पकड़ में ले लेवे क्योंकि कारण है कि गर्मी इती है माथे बे पसीना और पछे पी ठंडो ठंडो पानी
0: ओ जी जिके में तो गुंजन में फ्रीजा भी जरा तो हाथ को लगाओ मैं तो मटकी रे पानी पी
1: तो देखो भला जकड़ी गया एक बीजो की है कि लोगों में एसी री एक हवा दौड़ उड़ी है जो एसी में बैठोड़ा ही बाहर दौड़े जट वो भी कौन बैठो एसी में नहीं मोरे घर एसी लगायो पर एक बात है कि कूलर एसी रे आगे बैठोड़ा जट अब गर्मी में जाओ नहीं तो पूरी वजह से भी आपको जकड़ी जाओ
0: ओ तो ना तो अपनी सरकार भी की अपे खुद भी की सब जगह पे अखबारों में भी पढ़ो कि सब जना ऐ हिदायत दे रहा है कि भाई 12-1 बजे के बाद में बाहर मत निकलो तावड़ो सागड़ो तपेड़ो है तो बाहर मत निकलो और अगर अड़ो जरूरी काम हुए तो मथो भी जो ढक के निकलो मथे कहीं कहीं राखो ताकि सीधी गर्मी है जगह पर मथे में नहीं बढ़े शरीर में सीधी गर्मी नहीं लगे तो ये जो छोटी छोटी बातें वास्तव में वो तो करी जे तो जब तो राखी जे मैं आज रही तो देखो युवा पीढ़ी कहो तो भी पढ़ी लिखी है और बुजुर्ग भी हमें इतना समझदार है कि यो ने के बिना बात रखे निकल गया आगे जो पर एक ए है कि रोकन रहे हुए में जो अगली रौनक थी पठियालों में बैठा रहता है दिनों में हवा आती रहती पर वो हवाओं भी हमें कोनी
1: ओ हवाओं कोनी ओंधियों कोनी ओ अंधेरी रुत देखी जावे तो आज थोड़ी घनी देखी जाए
0: मन नहीं लगी
1: आज थोड़ी घनी वो

0: पंक्ति देखी थी जिसको सात सात दिन बैठती
1: चलती
0: एक
1: नहीं।
0: एक जड़ी बाजती निरंतर बाज बाजन आ रही
1: और धूड़ आम थी
0: धूड़ा दिन रोज सुबह दे पांच संजा तीन टका वो बुहारी देता
1: वो चीज को नहीं हमें
0: वो चीज हमें
1: बदलाव आ गया।
0: देखो बदलाव का कारण है क्योंकि एक तो अपार है नहरीकरण का कारण वृक्षारोपण अधिक होगी वृक्षारोपण की एक धूड़ नो बांध राखी
1: जो आप शहर की बात बताई नी ठीक तरीके से और तरीको अपने गाँव में भी चल रहे
0: बिल्कुल
1: जो हमें गाँव सु थे समझो आधो किलोमीटर भी मत देखो किलोमीटर तो घनी बात रही आधो किलोमीटर तक कोई घर चार घर जो एक कोई परिवार बस गयो तो उन्हें ढोणी कहता वो ढोणी है
0: वो ढोणी कही
1: थोड़ी सी आगे जाओ नेड़ा नेड़ा खेत हो तो उन्हें मत ढोणी है हमें वो ढोणी और गांव
0: एक हो गया
1: जो बीच में जी को जमीन होता कुछ तो जमीन और लालच भी हो गया और कुछ देखो सोराई वही जना आदमी थोड़ा मोटो घर बनाए रहना चाहे आप घर में थोड़ी बाग बगीचो लगा ले और ढोर डगो हुए तो सोरो बैठे तो गाँव में भी अपर जो चल रही है जो जगह रोक ली जगह बना ली गांव और ढोणी है जो भी हेक होता जा रहा चलो बढ़िया है पर जितनी उन्नति हुए उतनी बढ़िया
0: एक और बात कही स्वभाव है कि उन्नति हुए जो तो ठीक है पर एक ये के जगह घेरन ने लालच में आपो आपरा पारंपरिक जो स्रोत था नहीं उन्होंने खो दिया है भूल गया कि पूरा उन्होंने बिगाड़ दिया है स्वरूप बिगाड़ दिया है नहरीकरण आयो है तो ठीक है अपन थोड़ा पानी मिल रहे हाँ। तो अपनी जो पुस्तैनी चीजो होती वो तो तलाइन कुआन बावड़ी यही जता पानी रो स्रोत तो यही जतो तलाए भरी सी जाना बेरियन कुआ सींची जान भरी सा आज री तारीख में तलाए तक पानी कौन पुगतो क्योंकि लालच रे कारण तलाई रा आगो सारा रोकीज गया है कब्जा कर लिया है अवैध निर्माण हो गया है उस जगह में कोई मन क्यों कोने
1: ऐ जो गलत चीजों घनी हुई है हमें ये में अगर कोई जागरूक किसान है या जागरूक कोई महिला है या जो हमें आप आज बात कर रहे हो तो ऐ अगर आप जागरूकता रखो ना तो अपन जो हमें जो था नहरीकरण है चलो अच्छी बात है नहर से अपन फायदा है पर नहरीकरण पर उधर ही है
0: अजो भी तरीके से जो है जो पहले होती थी
1: तो अपने साल भर चले
0: तो अपने साल भर चले और वही काम सिंचाई में आ तो वही पशु खेड़ियों ने पानी मिलते हुए अपने मिलते पार्लर पानी जो कहता पार्लर पानी मिलते लेकिन हमें वो जो रास्ता है वो सारा रास्ता बीच बीच में केत पानी खुनीज गई है हाँ, कब्जा कर लिया है तो पानी रो रस्तो ही पूरा बदली गयो पानी रुक गयो और हमें तो की है के बाठे आली खोन ने लालच में जगह जगह माथे
1: जो
0: अपना ताला रहता पानी रा हाँ। वो चीतालो थी लम मोटी मोटी चीतालो माथे पानी बस तो रेले वे जो पानी
1: हर तलाई रे आगे आगोर रखोड़ो तो आगोर सुखी है तलाई
0: बरीस बरीस थी हमें वो बाठे रे लालच में जगह जगह खोनो खुन रखी है तो पानी आवे जो थोड़ो घणो पानी आवे वो भेड़ो पवे तालरा तक भरी बहतो खड़ी ना तक खेतों तक पुगे ही कोनी तलाए तक पुगे ही कोनी
1: भाई यूं नहीं गुंजन बहन के कुल मिलाए के अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो नहीं तो आप और किसान भाई की ना पूरी बहनों की के पुरानी परंपराओं रा जो आप और पानी रा स्रोत है वो ना वास्तव में थे
0: और
1: संचय कर रखो
0: संचय करना
1: संवार रखो ये जरूरी कोनी कि आप पानी सींचो मान लो आप और घरों में टोका भरोड़ा है तो अच्छी बात है पर वो चीजों भी आप बरोबर रखो क्योंकि वो ना खत्म कर
0: विरासत है नुकसान है विरासत है आप और बीजो की एक जने रे सोचन सो कोनो है ए गांव वाला पूरा परिवेश नो सपनो सोचना पड़ से ये बारे में और अगर कोई एड़ो कदम उठावे उमरे मार्ग में बीच में पड़े तो उ ना हटाव नहीं करे पहले तो के ए बीच में नहीं आवण चीज औरन रे जो आगो रे ये आगो रे बीच में तो कोई तरीके निर्माण कार्य होनो नहीं चीज
1: भाई ए तो म्याल देखती बात है गुंजन मेन के जो अपर गांव रे में अपनी सरकार ट्यूबवेल लगाए हर गांव में ट्यूबवेल लगोड़ा है हेडपंप लगोड़ा है पानी की सुविधा करी है पर थे गौर कर लो जद बैसाख जेठ रो महीनो आवे नी तो ट्यूबवेल रा मशीन बढ़ जावे हैंडपंप में पानी आवणो बंद हो जावे कुछ न कुछ जो तकनीकी खराबी हो जावे क्योंकि पानी री खपत हुई ज्यादा
0: और पानी गर्मी
1: निकले कोनी और मथे पड़े लाए
0: लाए
1: तो ये बखत रे महीनो अगर अपने बेरियों रे महीनो पड़ी वे नी तो खट गया, गड़ो भरियो ना,
0: गड़ो भरियो, काम तो वे अपन
1: तो अपन काम रुके।

0: ढोल अगर घर में है अपने मवेशी है तो वो भी प्यासा को नहीं रहे और अपने वो सुविधा बनोड़ी है। तो जरूरत है कि हमें बरसात रो तो देखो मौसम आई ज रहे है, बरसात हो रहे पर अपर ही आज अपने तो ओख्यो तेड़ो पछे आवे बरसात
1: अपोरे तो
0: जा
1: आवे
0: सब
1: मुड़ी
0: सु
1: जावे।
0: लारे जमती जुगो बचोड़ी भी वो आवे। पर बरसात सु पहले जो था मनो आगोर याद रायो नी तो हणो ए वक्त है कि अपे अपने जुगो नाड़ी आए तलाई है सरोवर है मोरी जुगो आगली जुगो जगह है उरी साफ
1: साफ
0: सफाई
1: सफाई कर रखो।
0: हणो कर राखो तो की गए जुगो हणो बाप रे मेणिया हर जगह थे देखो तो मेणिया रो एड़ो गंदगी बखरियोड़ी है गुंजन मेन के मुंह तो देखो है तो मेरा तो खून बढ़ जावे। अरे क्यों तो अपो है पैकेट बंद एड़ा जो चीजों उगे मोए हुए वो बच्चों ने खुआओ और क्यों तो उम्र शरीर ना नुकसान हुए और क्यों है गंदगी फैले और
1: फैले
0: क्यों है मैनी आना शहर में नालियों में
1: अरे
0: फंसे और पछे वो पानी बाहर आवे।
1: अपो खुद जागरूक हो जाओ और खाना बंद करना नहीं तो बिकना ही बंद जावे।
0: बस
1: पर
0: सही
1: वो
0: है
1: इस तो बात है कि अपोरी तरफ सू अजत वो नकारी सू को
0: नकारी
1: नहीं
0: तो
1: अपो
0: कोनी नहीं
1: नकार दो तो ये गंदगी पर्यावरण भी अपोरे शारीरिक भी स्वास्थ्य ये सारा ही सुधर जावे सब तरह सो अपनो सुधार मिल जावे। लेकिन जरूरत है अपोनो खुद ना जागरूक होने और अपनी सखियों सुन रही है अपोनो तो जरूर कहीं ना कहीं असर हो से सखियों माथे और ये मामले में अमल भी कर से कोशिश कर से
0: मैं
1: आपके घर
0: जरूरी
1: परिवार
0: है
1: से
0: ये
1: शुरुआत
0: जरूरी
1: भी कर
0: है
1: से।
0: क्योंकि एक बार पहले भी मैं बात बताई थी कि कदे गांव राज्य को उकूड़ा हूं था आगे भी भाई कचरो तो आगे हूं तो ये बात को नहीं पर वो कचरो की हूं तो थोड़ी घनी
1: जैविक कचरो
0: कुचरियों
1: कही थे
0: कुचरियों
1: वो
0: का कोई छोड़ा
1: ने
0: या
1: जैविक
0: कोई
1: कचरो कही
0: हाँ
1: तो
0: ओड़ो कचरो हूं तो जब घर फूस बारे हो तो वो कुंडो को तो जो जाए कूड़े नौ खाता तो वो गौर महीना हर गौर महीना कुंभार होता और वो कुंभार है जो 15 दिन 20 दिन नियाई चढ़ाता जो जे थोनो थोड़े देखोड़ा वे तो कच्चा जो मिट्टी वे नी चिकनी मिट्टी उमेरा घड़ा मटकी कुंभार बनावे वो चक को ना वे थोड़े देखोड़ा वे
1: हाँ, चक
0: तो
1: देखता
0: मटकी और घड़ा जब बने इन दिनों में खूब बने क्योंकि गर्मी में मटकी थी जो मोंग बदती तो 15 20 दिन वो कुंभार नहीं आई जगह होता तो उमो ना वो कचरो चाहिए तो उमो कने मैंने याद है वो एक लकड़ी रवड़ा भनोड़ा हम था चालनी दाई और वो तो कचरो भेड़ो कर कर कर आप बोरा भर भर मटकियों ने एकदम एड़ी फुटरे तरीके से गुंजन में वो जमाऊ था वाकई वो कला हमें गाँव में है कि नहीं है मैंने कौन था और पूरी मोटी सी जगह रे मैंने मटकियों घड़ा छोटा छोटा तोड़िया पूरे ढक्कन वो सब यूँ एकदम तरीके से रख के पछे फिर मैं तो मथे वो कचरो है जो लाइन ऑफ देता
1: वो कारण है तो वैसे एक कचरे के कारण वो भागता को नहीं और
0: हाँ
1: आपस में टकरीजता को नहीं।
0: टकरीस्ता को नहीं और वो धुआं पछे वो ना दुखाम था ताकि वो रात भर है जो
1: पक्के
0: पक पक जाऊता
1: पक
0: एकदम पक
1: जावे।
0: के घड़ा एड़ा सोने दे तैयार हो जाता
1: तो हर चीज रो महत्व तो और उपयोगी थी चीज के थी नुकसान दे थी को
0: नुकसान
1: नहीं।
0: दे बोली
1: हमें
0: हुई
1: जो को चीजों है वापरण में आई है सब नुकसान दे
0: तो
1: प्रकृति
0: मैं
1: वास्ते
0: एड़ा
1: भी
0: मेनिया को
1: नुकसान
0: नहीं होता
1: है
0: नहीं तो मेनिया हो तो घड़ा में चिप जाओ
1: तो खराब कर दे
0: मतलब
1: मैंने
0: एड़ा
1: ये।
0: कचरो जद को नहीं होता कचरो जद भी हो तो पर हमें अगर अपने कदे थोड़ा मौको मिले तो थे गाड़ी से भी देखो अपने गांव और मीनो अगर कूड़ा दिखे ना तो गुरु में कूड़ा कागज दिखे
1: मेनियास देखी
0: लोगा
1: जो
0: गलियों
1: मैं तो
0: में और
1: देखी आए
0: बाड़ों में
1: हूँ गांव
0: मेनिया
1: में
0: और
1: रह
0: कूड़ा
1: आई
0: दिखे
1: हूँ।
0: तो वो गलत है अपने हाथ जोड़ के विनती है अपनी बहनों से कि जितो हो सके ए जिको मेनिया गलियों में फेंके बच्चा और एडी जिको हल्की चीज और टाबर खावे मोना बिल्कुल नहीं खावन दे क्योंकि स्वास्थ्य वगा भी बहुत नुकसानदेह है
1: और साथ ही पर्यावरण ने
0: और
1: वास्ते
0: पर्यावरण न
1: भी
0: पूरे नया जो मेणिया ये
1: सत्यानाश
0: तरीके
1: कर
0: रे सत्यानाश
1: दे।
0: करे तो देखो आज तो थे टॉपिक तो फुटरा फुटरा लाया हो पर हमें म्याली तो इच्छा हो गई एक गीत सुनने की
1: थोड़ी इच्छा हुए तो और मैं पूरी नहीं करा
0: हाँ
1: एडो भी वह
0: ये
1: कोनी
0: बात
1: तो
0: भी
1: जरूर
0: जरूरी
1: पूरी
0: है
1: कर सा लेकिन उस पहले सुना सा कुछ जरूरी संदेश और बाद में थोड़ी इच्छा पूरी कर सा और सुना सा एक मीठू फुटरो गीत।
2: नौकरी लग गई।
3: अरे वाह बधाई हो तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी नया मोबाइल
3: अरे
2: जींस
3: रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है
3: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: प्रदीप
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा
3: अच्छा
2: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: गली गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: वाह सा वाह, गुंजन मैंने बहुत फुर्सो गीत तो थों सुनायो, पर कहीं नहीं के बैठे बैठे दिमाग रे मेरे दिमाग में थे देखो विज्ञान उन्नति करी है बात मन और अपने बदलाव भी आयो है रहन सहन में खान पान में सब बात मनी है। पर ऊपर आड़े जो कोई कृति बनाई है जिके ने कहीं मथो कहे नहीं ये रे मोह देखो थे एक सेकंड में कितना विचार आवे।
1: एक और बात कहो शोभा मैन, विचार आना ए तो एक क्रियाशीलता जाना तो दिमाग रहे से एक्टिव
0: ठीक है।
1: और जद आजकल जो उपयोग ले रहे हो ना आप आधुनिक टेक्नोलॉजी रो एआई रो कंप्यूटर रो मोबाइल रो ये रो उपयोग लेता रहा
0: घना
1: तो ये दिमाग हो जाए निष्क्रिय
0: ए वही नहीं बात
1: के ए दिमाग पे काम करना बंद चुको चीज चलती रहे से तो वो और उन्नत हो से और जिके चीज ना आप बैठाए दी वो जैसे
0: जड़बूटी बन जैसे
1: जड़बूटी हो जैसे
0: वो बस निर्भर हो जैसे
1: हाँ
0: थोर क्या होना मतलब है कि माथे ना चलाते रहो
1: चलाते रहो ना दिमाग में विचार आते रहो ना चीजें और अच्छी बात है विचार आना
0: मैं आले माथे में आना बैठे बैठे विचार आयो कि जिको आप घर देखो आज ही हमें आप तो है तो देखो राग आला पड़ जाओ कि आज ही नारी होशियार है आज ही नारी पढ़ी लिखी है आज ही नारी समाज में भी काम कर रही है पारिवारिक काम भी कर रही है घर में बुजुर्गों ने भी देख रही है टाबरों ने भी देख रही है मतलब थे वो ना कहीं भी जगह खड़ी कर दो तो उन दिन नक्शो तो सुई पड़ सा
1: सही बात है।
0: पर तो होने बावजूद भी कई घरों रे महीनों वो चीज री वैल्यू कौन है वो चीज री वैल्यू वही कौन है जाना थोड़ा दुख हो जाए मन में।
1: देखो ए है बात संस्कार री और विचार री। आजकल नारी जो तो बात करी के आजकल नारी पढ़ रही है बढ़ रही है सब चीजों में संभाल रही है लेकिन यही जगह आप 50 साल पहले री नारी की तरफ देखो,
0: देखो
1: तो वो न तो पढ़ी
0: हाँ।
1: ना उन्हें आगे निकलन दीजियो ना हाँ। उनमें संस्कार और उत्ती गति हुई तो जे शिक्षा रो अर्जन हुए नहीं
0: हाँ।
1: तो उस जगह में संस्कार भी भेड़ा भेड़ा बे हुई अक्सर अड़ो देखे जे आपको सारा रो कोनी कह सके अपवाद हुई अपवाद हो सके लेकिन अक्सर अड़ो हुई कि
0: अपवाद हुई 5% 10 90 पैसा
1: बढ़िया जाए अगर तो शिक्षा रे साथ में जब संस्कार अर्जित हुई नहीं तो वो में ऐसा गुण अपने आप आ जावे लेकिन जब मेरी शिक्षा रोकी जावे नहीं तो संस्कारों माथे भी कितने के रोक लगे
0: असर
1: वेरा हाथ बोन दीजिए वेरा विचारों माथे बंदिश लगाई जावे तो वेरा दिमाग ने जो बात करी के क्रियाशीलता नो निष्क्रिय करण नो प्रयास किया जावे तो जब दिमाग निष्क्रिय हो जावे नी तो वे जगह माथे वेरी सोच भी सीमित हो जावे तो एड़ी जगह माथे एड़ी नारी रो सम्मान जो तो बात करी के वे जगह माथे दुख वे तो वो दुख ये कारण वे क्योंकि उन्होंने उम्र समय में उम्र विचारों ने बंद दियो गयो उन्होंने निष्क्रिय कर दियो गयो हमें

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरू भाई सुनाई दी और महिलाओं जो आप ही जानो कहने आप रहा मुंडे आप रहा बखोन वो तो खैर आप कर रहे जाओ पर हकीकत है जे सही बात बता रहे हो गलत बात को बता रहे और ये कड़ी में अगर आप एक बात जोड़ो नहीं तो आप और जो बुजुर्ग महिलाओं हैं थे देख लो गौर करो कदे भी रोटी रीति टुकड़ी खराब कौन करे
3: कोई भी चीज रिकॉर्ड करे थे देखोगे अगर जो कहते हमें आजकल टाइम में थे देखोगे कोई अपन साफ कर भले वो में 50 ग्राम ही निकले लेकिन उपयोग करे बेजा को जाओ। एक और उदाहरण बताओ थानो मैं आज री तारीख में अरे हकीकत बात है मंदिर रो पुजारी है और एज ब्राह्मण रो काम करे जो पूजा पाठ पूजा करावे ये रो वेद मंत्र तो कोई संभ्रांत व्यक्ति है जो मोनो हर साल 12 महीनों रो धान वो न खावे
2: ठीक है।
3: धान न खान मतलब सिर्फ गेहूं ना मतलब 6-7 कट्टा गेहूं रा 5 किलो दाल 5 किलो मूंग
2: मतलब खावन सामग्री जितनी
3: धान जो सीधी रसोई जो है ना वो सीधो मोनो 12 महीनों रो न खावे।
2: क्या बात है
3: जी के मैं मूंग जो देसी था वो दुकान आलो तो जी के वो ना देसी मूंग दिया तो देसी मूंग में थोड़ा
2: कचरो हो गई
3: तो ओ जी के ना मुफ्त रो मिले पड़े हो नी ओ वो ना पछो दुकान आले लाए दिए तो मोरे ने सेठ जी ने कह दिया मोरे एड़ा के मूंग कौन चाहिए
2: और मैं देखू
3: मोनो साफ मूंग चाहिए हमें थे बताओ
2: बताओ
3: के साडा में कतो आराम भड़ो रहे बात है के अगली लुगाई होती जी को बिल्कुल धाम ना जाया कौन जावन देती है हणारी लुगाई है हणारी मतलब हाथ श्रम श्रम जो को करने बाद नहीं वो श्रम नो करने से बिल्कुल कतरा रही है और शरीर ने बिल्कुल दो रोग कौन कर रहे जबकि अपनी अगली लुगाया तो खावनी चीज रो भी दोनों बाहर कौन जाओ घर में कच्ची दोन तो की बाहर जाओ
2: ना ना इतनी सी चीज नहीं खराब को नहीं होने देता क्योंकि अन्न जिके नो की अपर शास्त्रों में देवता को आप खुद भी कोई अन्न देवता है आप जब जी मोहे तो हाथ जोड़ के जी मोहे और अगर हमें वो हाथ जोड़ के जिकी थाली में आप खा रहे हो हमें वो मैं जब साग ही ऑटो नोक दियो और रोटी भी नोक दी कोई दाल चावल है तो वो भी नोक दिया।

0: કદમ ઉઠાવવાના ચીજે અરે જો બીજા વ્યંજન જો બહાર લાવે કે બન રહે એની અપારે યનો યમ મતલબ પૂરી તરહ સે પાબંદી ઓર રોક લગા દેવની ચીજે
1: अगर आप कोई नई प्रणाली अपना रहे हो या आप कोई नई चीज कर रहे हो या आप कोई नवी खोज कर रहे हो तो एडी करो कि जिसके ऊपर भी पैसा बचे जत मजेदारी
0: बच्चे भी और स्वास्थ्य वर्धक
1: भी हुए और प्रकृति जो अपन धोबा भर के चीजें दे रही है उस आप अगर कोई लाभ उठाना चाहो तो वो चीज आप कर सको न कि एजो चीजों पर सुचारू रूप से बहती थी वो आप बिगाड़ो प्रधानमंत्री योजना जो चलाई है सुनोड़ी हुए तो कुसुम योजना तो वो कुसुम योजना ना अगर आप अपनाओ तो देखो में बे पैसा फायदो भी है
0: में पूरी तरह से
1: सूर्य रोशनी रो है जो
0: में जवाबन पूरी तरह से फायदो हो सके ना बताना जाए इसके कुसुम योजना जो को है वो पूरी तरह से सोलर ऊर्जा रे वास्ते बनाई गई है। सोलर ऊर्जा की वे सोलर ऊर्जा एक तरह की नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय रो मतलब है कि रोज प्रतिदिन अपन नई रूप से मिले कदे खत्म नहीं होने वाली ऊर्जा है जिका ना अपन कोई मशक्कत कौन करनी पड़े और वो अपन नित्य प्रतिदिन उज वेग से मिल रही है। तो ये ना कहे नवीकरणीय ऊर्जा जिके में अपन ज्यादा लागत को नहीं आवे और ज्यादा बीजी ऊर्जा खर्च को नहीं वे ऊर्जा ने बढ़ाने वास्ते जब आप बीजी ऊर्जा बढ़ावा नहीं तो में बीजी ऊर्जा खर्च हो जाए
1: कोयला हो जाए पानी हो जाए
0: ये में कोई चीज रो प्राकृतिक हास को नहीं हो रही हो प्राकृतिक रूप से कोई चीज नष्ट को नहीं हो रही और प्रकृति जो को दे रही है वह सुज आप ऊर्जा बना रहा उरी ऊर्जा सु आप घर ही ऊर्जा चालित कर सो यानी कि घर में आप जो उपकरण चले बढ़िया आपो घर में जितना भी उपकरण चला रहा हूँ आप खुद रो छत वे ऊर्जा ना पकड़ से और वो ऊर्जा आपको सरकार न दे सो सरकार उरे बदले में एक ही है कि एक सिस्टम बनो रे सरकार हो कुसुम योजना में कि आप और घर से जितनी भी ऊर्जा बन से वो ऊर्जा सरकार ले ले से और अपन जो को बिल बिजली रो बिल आवे उए में वो माइनस हो जा से तो अपन कोई तरीके रो शुल्क देवनो कौन पड़े बाकी तो आपो मथे निर्भर करे कि आपो कितनी ऊर्जा बाड़े ईरो मतलब है तो कोनी कि आपो घर है खुद बड़ा बड़ा का अंधाधुंध बाड़ो क्योंकि अगर आपो खुद बाड़ से तो अपन समझ में आ से तो वो की है कि आप सरकार ने देसो सरकार स्वामी पाछी आप दे सो तो एडी घरों घरों में अगर ऊर्जा
1: पैदा हो जाए
0: पैदावार हो जासे तो सरकार करने कितनी बचत हो जासे और अपोरो जो को ग्रीन हाउस है यानी कि ऊपरी मंडल पृथ्वी री जो ग्रीन हाउस मंडल है एक ये कि जितनी ऊर्जा रो आप उपभोग करें नी वे हिसाब से अपन एक मीटर मिलिया करे एक ग्रेड मिलिया करे
1: देश
0: हाँ तो वो हिसाब से अपनी ग्रेडिंग तय होया करे तो अगर आपको खुद ऊर्जा निर्माण करन लग गया और वो ने बालन लग गया खपत करन लग गया तो वो में अपनो ग्रेड सुधर से
1: अच्छा
0: और अपनी खुदरी जो ग्रीन हाउस है वो भी सुरक्षित रह सर और ए जो आना जो गर्मी रो दौर बढ़ रहे हुए
1: तो ये गर्मी ना देखते ही मना दिमाग हाँ, में
0: तो ये गर्मी रे दौर में एक बहुत अच्छो और सराहनीय कदम बन के रह से और यद्यपि आप बिजली से संचालित उपकरण रो अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं
1: वो हर चीज
0: वो हमें विज्ञान माथे निर्भर है और जो जो तकनीक बढ़ती जा से तो ये तो उपयोग बढ़ से ही लेकिन अगर ये जगह मत आप सौर ऊर्जा उपयोग करें तो सोचो कि आप और सरकार मत है तो दबाव कम पड़ से और सरकार
1: लोन भी दे
0: सरकारी तरफ से पूरी सब्सिडी है और सरकार लोन देवे और किस्तों के माध्यम से अपन लोन भी उतर जावे ये में अपन आवेदन करने बड़ो सरल तरीको है ई मित्र मत जाए कि आप आपरा जो खुद रो घर रो कनेक्शन है बिजली रो उरे नाम से आवेदन कर सके उरे वास्ते जता डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो है आधार कार्ड है पैन कार्ड है आप और घर रो जो पट्टो है वो अपन बताना पड़े
1: उनमें
0: रिकॉर्ड देना पड़े और उ माथे अपन सरकार आवंटन दे देवे और उर बाद में सरकार से जो पंजीकृत एजेंसी आए वो आपस से संपर्क करे और वही जो अपन बैंक से लोन भी उपलब्ध करावे मतलब आवेदन करना पड़े और सरकार पूरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों ने क्योंकि छतो ऊपर ही खाली पड़ी है और तावड़ो ऊपर भरपूर आ रही है घर में तो वो तावड़े रो सदुपयोग लेके ऊर्जा रो जो संचय ने आप खुद करो उत्पादन करो, सरकार ने दो और सरकार भी बदले में आपने जो सब्सिडी है, सुविधा है।

0: में सलाह करते
1: और शहरों में तो देखो घरों रहे जो लंबाई चौड़ाई है वो सीमित है, ग्रामीण इलाकों में तो घर भी बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा है अगर तो वो तो मानो और ज्यादा बिजली उत्पादन की सुविधा मिल सके और लंबो चौड़ो प्लांट लगा सके और वो लंबे चौड़े प्लांट से मानो अधिक उत्पादन मिल सके, सरकार नो भी उसे फायदो और अपन भी उसे पूरो फायदो हो सके। बिल्कुल, तो सखियों सुना सो एक बढ़िया गीत।
2: सुनो एक तराना, नया एक फसाना।

0: वाह साहब, आपने मैं गीत तो फूट रो शिक्षणा दियो और हमें जो घड़ी टिक टिक कह रही आज अपनी पढ़िया रही वक्त पूरा हो रहा है।
1: तो ये रे साथ
0: तो
1: ही रेडियो सखियों से वैसा सीख और अगली बार घड़ी चर्चा और जानकारी के साथ हाजिर हो सौ।

0: ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.
1: The National Testing Agency, NTA, has said that a technical glitch at the end of its technology partner TCS delayed the commencement of the Common University Entrance Test, UG 2026, at some examination centers today. In a social media post, the NTA said the issue has been resolved and the examination is being conducted with full compensatory time to ensure that no candidate is disadvantaged. The agency said the timing for the afternoon session has been revised. Candidates will be allowed entry from 2:30 p.m. while the examination will begin at 4 p.m. instead of the scheduled time of 3 p.m. NTA said candidates appearing in the morning session are being given the full duration of the examination and will be permitted to leave only after completing the paper. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying wreath at the War Memorial, General Chauhan said it was a matter of great honour for him to superannuate with the Tri-Services Guard of Honour. Marking his transition to civilian life after over 4 decades of service, General Chauhan described his tenure satisfying and excellent.
2: A matter of great honor for me to superannuate with the Tri-Services Guard of Honor. I thank the three services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honor, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I laid the wreath at the War Memorial for the last time in uniform as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. This is symbolic of my transiting from uniform to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure.
1: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar today said that elections in India are conducted strictly in accordance with the Constitution, electoral laws and the transparent guidelines issued by the Election Commission. Addressing the second National Conference of Councils representing the Election Commission at the India International Institute of Democracy and Election Management in New Delhi, Mr. Kumar highlighted that around 1.8 crore personnel are deployed during Lok Sabha elections to ensure transparency, accountability and the conduct of free and fair polls.
3: Elections in India are held strictly as per the Constitution of India, electoral rules, electoral laws and the transparent instructions issued by Election Commission of India from time to time. No right and no left. It's only law. It's only transparency. You know how many electors are there in India? You add the continent of America, North America, South America, the entire Europe, the entire Australia, the entire Africa, and still 8 crores counting. We are roughly 95 crores plus today.
1: The conference began with demonstrations and briefings on electoral roll management, special intensive revision and polling, and counting procedures. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. At least 7 people have been killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes across Bihar. 3 fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded 2 deaths. Additionally, 1 death each has been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing grief over the tragic incidents, Chief Minister Samrat Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that for the first time, Indian Hajj Mission has received 2 prestigious Labetum Awards from the Saudi Ministry of Hajj and Umrah for excellence in Hajj coordination and communication. In a social media post, Mr. Rijiju said that the successful conduct of the core phase of Hajj 2026 reflects the seamless coordination between the Ministry of Minority Affairs, the Hajj Committee of India and the Indian Hajj Mission led by India's Ambassador to Saudi Arabia and the Consul General in Jeddah. Goa today celebrated its 40th statehood day at the Kala Academy in Panaji. Addressing the gathering, Vice President C.P. Radhakrishnan described Goa as a model state that has successfully balanced development with the preservation of its rich culture and heritage. More from our correspondent.
4: Vice President C.P. Radhakrishnan could say, Goa stands as an inspiring example of how identity and progress can go hand in hand. Addressing the 40th Goa Statehood Day celebrations at Kala Academy in Panji, he said Goa has successfully preserved its cultural roots while embracing modern development. The Vice President described Goa as much more than tourist destination, calling it a living civilization shaped by cultural exchange, social harmony and intellectual openness. Earlier, Vice President inaugurated the Mario Miranda exhibition, released a commemorative postage stamp and special cover on the renowned cartoonist, distributed awards and appointment letters and launched enhanced assistance under Deen Dayal Swasthya Seva Yojana scheme. Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
1: Hindi Patrakarita Divas is being observed today. The day is celebrated every year on May 30th in India to commemorate the beginning of journalism in the Hindi. The day marks the publication of Udyant Martand, the first Hindi newspaper in India, which was launched on May 30th, 1826 from Kolkata. The newspaper was founded and edited by Pandit Jugal Kishore Shukla, who is regarded as a pioneer of Hindi journalism. On the occasion, Lok Sabha Speaker Om Birla today extended his greetings to journalists, writers and enlightened individuals dedicated to the Hindi language. In a social media post, Mr. Birla said that Hindi journalism has served as a powerful medium for awakening social consciousness, strengthening democracy and reflecting the sentiments of the people. US President Donald Trump held a two-hour meeting with his top advisors at the White House to discuss the possibility of a deal with Iran aimed at extending the ceasefire. The meeting held in the Situation Room ended without any clarity on the next course of action. Ahead of the meeting, President Trump said that any agreement to prolong the ceasefire would require Iran to reopen the Strait of Hormuz, commit to never developing a nuclear weapon, and allow the United States to remove its enriched uranium stockpile. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth has said that Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. Addressing the Shangri-La Dialogue, Asia's premier security forum, Mr. Hegseth said the U.S. has adequate military stockpiles in the region and around the world to undertake such operations if required. He said the country is well positioned to respond to any contingency. The U.S. Defense Secretary also asserted that Washington remains firmly committed to the Asia-Pacific region despite its involvement in the conflict with Iran. He said the U.S. has not shifted to its strategic focus away from the Indo-Pacific. Defense Secretary Rajesh Kumar Singh held bilateral discussions with the Defense Minister of Netherlands, Dilan Yesegol Segerius, on the sidelines of the International Institute of Strategic Studies Shangri-La Dialogue in Singapore. In a social media post, the Defense Ministry said the talks focused on enhancing bilateral defense cooperation, strengthening military-to-military ties, and exploring opportunities for defense-industrial collaboration, reflecting the growing strategic partnership between India and the Netherlands. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbha, and Chhattisgarh. The Met Department said that northeastern states and coastal Karnataka are likely to experience thunderstorm accompanied with lightning. Heatwave conditions are likely to prevail over West Madhya Pradesh and Telangana. On to sports. In badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krastev are taking on Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami in the semi-finals of the Singapore Open Super 750 tournament today. The Indian pair secured their semi-final berth after defeating Malaysia's Chen Thangri and Toh Ey in the quarter-finals yesterday. Meanwhile, India's men's doubles duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0, if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his five-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
6: As far as Operation Sindoor is concerned,
7: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
5: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी,
8: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
5: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
9: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
5: राष्ट्रपति ओमी नावलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़न एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
10: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
5: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,40,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
11: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
8: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
5: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट ऑइल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में। नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत है रवि का।

अपनी कमर लाल के खाए।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवान जो शहीद।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत।

Excellent!

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: दूसरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: बाज घुंघरू छन छन छन छन बाज घुंघरू।

आएंगे तुम तो भी याद फसाने और तरन बचपन के तरन बचपन।

0: मन की बंसी हरदम बजाए तेरे मिलन के गीत रे, मिलन के गीत रे।
1: बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में। शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।
2: लगता है कुछ ऐसा मिल गया न तो

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

जाना मैं रह गई दिल को थाम के, आज जाना होने से सरकार हो गई। देखो जी देखो कैसी हार हो गई, देखो जी देखो कैसी हार।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग। इस फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है समसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया।

0: हाल मेरा बेहाल है, पूछो जरा पूछो क्या हाल है। हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए दर ढूंढ के लाए। न जाने कहा दिल को गया, न जाने कहा दिल को गया,
1: न जाने कहा दिल को गया, न जाने कहा।

0: मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई चादर ढूंढ के लाए। न जाने कहां दिल खो गया, न जाने कहां दिल खो गया,
1: न जाने कहां।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ तेरी मेहरबानी, तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी, ओ ढोल सजना ढोल जानी, मेरी गली आ।

कहनी है सुननी है कितनी बातें, कहनी है सुननी है कितनी बातें, थोड़े से दिन है।

यूं ही जवानी ओ ढोल सजना ढोल जानी मेरी गली था तेरी मेहरबानी।

0: मस्तानी ओ ढोल सजना हो जानी मेरी कभी का तेरी मेहरबानी।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी।

0: और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत शिवांश, अनुप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

0: मेहनत वालों की सुनता है वो ऊपर वाला, खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दादा।
1: छुपे हुए हो चंचल पर जा जा जा, देख अभी है कच्चा।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

ಹಾಗೆ ಬಾರುತ್ತ ಪ್ಯಾರ ಸೇ ಚಲೇ ಜಾನಾ.

मनचाही गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्नि चक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्नि वलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पी जी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: वाले हो?
1: जी।
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाईकोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी मां ने मुझे पाला पोसा बकिया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थी, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन

0: सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के दो तीन अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
1: ओह, डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
1: कभी तबीयत कैसी है?
2: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
1: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
2: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
1: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
2: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
1: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
2: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
1: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है,
2: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
1: अच्छा,
2: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
1: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
3: नमस्ते डॉक्टर।
1: ओ नमस्ते,
2: कहाँ गई थी तुम?
3: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
2: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
1: मेरी पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
2: हम दोनों के लिए।
3: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
2: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
1: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
2: अच्छा,
3: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते, हम ऐसे हम वैसे?
2: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना।
3: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
2: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
3: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दे, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: देजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: ख्याल है।
0: मुझे याद है ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ऐ, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा
1: है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ले जाओ बेनी, ले जाओ ना तू। अरे तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरी में से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताओ। दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
0: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ।
1: आप डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ।
0: तुम बेनी हो ना? हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ मैं लॉरेंस हूँ।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका।
2: और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कंपिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कंपिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में। गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गए हैं, तो लगता है।
2: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ।
0: दिल की तरफ भी पेन है।
2: वैसे
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते। बस ये कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: बाय बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम?
1: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
1: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
1: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
1: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
1: अब भी मन में विष भरा है, तुझे विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
1: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
1: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। हा? इसका दर गिर तो नहीं गई हूँ।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
1: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती। आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
1: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। टेरर?
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
1: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ।
1: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
3: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ

0: उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रहे। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। दो तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
2: लेकिन मुझे तो कहना है। कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
2: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
2: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
2: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
2: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
2: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
2: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकती हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
2: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसीलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
2: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
0: गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
0: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
0: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
0: डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
0: मुझे बहुत डर लग रहा है
3: डॉक्टर। इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे

0: सब बात सच सच बतानी ही थी।
1: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है
2: डॉक्टर। धीरज रखो डेजी, धीरज रखो।
0: बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो बेनी आ रहे हैं।
3: आइए आइए, कहाँ जाना?
2: ओ डॉक्टर
3: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता।
0: इस पैकेट में क्या?
2: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट देखकर तुमने क्या डायग्नोज किया
3: है? रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
2: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
3: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
2: लॉरेंस ये बात इस डेजी से कहते हो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
3: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
1: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
2: तुम्हारे लिए एक चीज है।
1: अच्छा देखो तो।
2: लो देख लो
1: साड़ी, ये अब काहे को, और यहां
2: मेरी ओर से प्रेजेंट।
1: प्रेजेंट?
2: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
1: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
2: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर साड़ी पसंद आई?
1: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
2: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़े ना समझ हो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देख रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो रूठ जाओ। नहीं नहीं ना, अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ऐसे ऐसे,
1: क्या क्या हुआ आपको? ले गई, ले गई ना बेनी, बेनी, बेनी, डॉक्टर। कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गया।
2: नो,
1: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
2: आखिर ये हुआ कैसे?
1: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा, सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह।

0: देवी ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह
1: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरिजा।
0: दुख तो मुझे भी है देवी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती, उन्होंने मुझ पर बहुत दुखकार किया था।
1: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरिजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
0: ना देवी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे बेबी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
1: गिरिजा
0: देवी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
2: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। हर एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
3: अच्छा,
2: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली।
6: दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
7: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
6: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
8: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुम।
6: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
8: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
6: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
9: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
10: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
9: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
11: जो शहीद

0: लाइट
1: साउंड
0: कैमरा एक्शन।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ है अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
3: जोगी जी प्रेम करो हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो खाओ।
2: इनसे बातचीत कर रही है विधि जैन।

0: ना जब तक पूरे ना हो तेरे साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते या हमारे परिवार की बेटियां बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूं। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
2: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
2: हाँ बिल्कुल,
1: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
2: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली बदमाश
1: जी
2: प्रैंक करने वाली वो मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
1: समझदारी
2: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
1: हाँ।
2: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
1: हाँ।
2: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
1: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
2: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ। पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं। तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ घर में भी।
1: हाँ।
2: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
1: अच्छा।
2: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
1: जी,
2: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो सब बताती थी। जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा

0: तने डाल दिया वो, और जो वृक्ष खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
1: यानी इस साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं। और गुंजा
0: करती रहूंगी।
1: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पास अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
0: हाँ नहीं, उतर ही गई थी, क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
1: अच्छा।
0: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
1: जी।
0: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसे हो वैसे ही रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
1: अच्छा।
0: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
1: जी।
0: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
1: जी।
0: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
1: अरे वाह।
0: हाँ,
1: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप अभिनेत्री बनेंगी। तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
0: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
1: अच्छा।
0: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
1: जी,
0: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती बुलाओ साधना को।
1: हाँ।
0: और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
1: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
0: देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मुझे बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए,
1: क्या
0: है ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे बस आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
1: उतनी बुलंद
0: आवाज। हाँ, बुलंद आवाज थी
1: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए। अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत
1: तो
0: घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की है उस जगीरा में,
1: जगीरा में मार खा के की हूँ।
0: वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद थी, उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप 1 सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी, अगर सीखी होती तो मैं बच जाती किसी भी चीज पर।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे, तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी, छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ। तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सचिन और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
0: हाँ,
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी,
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाए लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
0: जी। तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है। और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ। एक ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है, तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
1: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
0: हाँ
1: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
0: जी,
1: है ना, हमको वहां भी लाइनें याद करनी होंगी
0: जी।
1: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
0: जी,
1: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगू
0: जी।
1: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
0: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है।
1: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ।
0: हाँ, जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं।
1: हाँ,
0: तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए।
1: अच्छा, ऐसा
0: जी। तो कोई गीत बता दीजिए जो
1: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं।
0: वो उसका संगीत कितना
1: खूबसूरत और बहुत मीठा संगीत है।
0: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा।
1: कुछ दिल ने सुना

0: कुछ भी नहीं।
1: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई है, मस्ती के साथ सब करती गई है और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं, जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
2: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
1: अच्छा।
2: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी, तो वो बड़ा गंदा सा पैच था।
1: अच्छा।
2: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वाज सैटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
1: हाँ।
2: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
1: जी जी।
2: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में, और बाकी थोड़ा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
1: जी।
2: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
1: जी।
2: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
1: नई
2: प्रोडक्शन में
1: जी जी।
2: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
1: हाँ।
2: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
1: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
2: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
1: अच्छा।
2: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
1: जी।
2: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है, तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
1: सारा लड़कियों से गिरी रहती थी।
2: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
1: जी।
2: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
1: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है। हाँ। शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के बाद।
2: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
1: जी,
2: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकराभरणम फिल्म आई थी
1: जी,
2: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकराभरणम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
1: जी,
2: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब
1: नीचे का।
2: लेकिन वो ले गए और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्ड एकदम, ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
1: वही तो सेम फिल्म।
2: हाँ सेम फिल्म। लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल, उनका कोई भी रोल है मैं करूंगी। जुड़ना ऐसी फिल्म से, तो विश्वनाथ जी तो बहुत, उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी,
2: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई। तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन
1: बोलती आंखें।
2: हाँ, तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
2: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना,
1: जी जी उसके बाद ही।
2: हाँ, तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
2: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा,
2: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं, मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की, उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ।
2: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब, और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी,
1: जी जुगनी,
2: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: है। अच्छी,
2: तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी।
2: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है, स्थल।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आप मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर, पारिवारिक तरीके से काम।
2: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको, साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है, तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर, वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
2: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा।
2: हाँ, ये भी बोलते, हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे।
1: हाँ।
2: कि ऐसा ही करना है, और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी।
1: हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
2: पति का नाम राजकुमार ही नहीं, राजकुमार आ गए।
1: वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
2: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
2: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है, तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है, तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम और मिलने आए, तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने। तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने, इनकार मैं जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले, अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है, बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली,
2: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर।
1: हाँ।
2: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा।
2: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए थी। हाँ। लेकिन उसके साथ शादी नहीं करा रही।
2: होता ना दिमाग में शादी, फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर
1: हाँ।
2: से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
2: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: है, वो वाली की है ना गंगा मैया। तो
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वही जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो एक प्यारी चढ़ाई को
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर, आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा।
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो।
0: इतना लाइक तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी लेकिन
0: बहुत प्यारी।
1: हाँ वो अच्छी।
0: एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती। ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी।
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा।
1: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
0: मतलब अब वो चाट और लस्सी खाते
1: पीते। हाँ
0: जी,
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा।
1: कि मुझे आनी चाहिए क्योंकि बनारस में ये

0: मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
1: तो सरदार खड़े हैं और
0: तो हमारे पंजाबी एक्सेंट ही नहीं।
1: अच्छा
0: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
1: जी,
0: हाँ ये काफी फर्क है
1: जी।
0: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू, तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
1: अच्छा
0: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में भी बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
0: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
1: जी,
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा
1: बहुत,
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा।
0: हाँ,
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते?
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत है,
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
1: जी,
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगे शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था। और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहां पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे।
1: मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था। उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने,
1: 30 गाने में, और सुना रहे थे पसंद है नहीं, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे। अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है। साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी ना
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, माय गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार।
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए। तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती, मैं तुमसे गवाता।
0: ये रविंद्र जी ने
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा।
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है।
0: अच्छा,
1: तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई। अल्लड़पन कहते ना,
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई।
1: ये बात है, मैं दोनों, मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए थे?
1: नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी। तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
0: अच्छा,
1: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों चाहिए,
1: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
0: जी,
1: तो यहाँ भी है, बस खुश रहे
0: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
1: नहीं, नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
0: अच्छा,
1: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
0: जी।
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
0: जी।
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
0: जी,
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ, तो उस समय वो चल,
1: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है। आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
1: नहीं, मैं करती भी नहीं।
0: मेहनत करो अपनी,
1: हाँ, अपनी मेहनत करो,
0: ये बहुत अच्छी बात है।
1: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
0: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30
0: जी,
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोना ये माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जी जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
0: हाँ,
1: अब देखते हैं क्या होता है।
0: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
1: हाँ,
0: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती है वो पूरी हो जाती है। हाँ, ऐसा हम मान के चलते चले, ये जगह बड़ी,
1: हाँ,
0: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं।
1: हाँ,
0: आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है।
1: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
0: जी,
1: कि ऐसा नहीं है कि लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमास हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
0: ऊर्जा सकारात्मक।
1: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
0: हाँ,
1: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में है, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊं या मर जाऊं।
0: अरे
1: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज हुई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
0: क्या बात है।
1: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमोस्फियर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
0: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है तो, क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई है तो कुछ गाने हम
1: मैं भी कोशिश करती हूँ
0: जी।
1: चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी है, सब कुछ है
0: जी।
1: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
0: जी।
1: उनका ही गाना गा देती हूँ
0: जी।
1: पुकारता चला हूँ मैं गली गली पहाड़ की, बस एक छाओ जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की।

0: गरीब हार थी, बस एक छांव जल्प थी, बस एक निगाह प्यार की उतारता चला मैं।
1: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें
2: तो। बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
1: जी।
2: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
1: और बचता कभी नहीं,
2: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माए
1: जी।
2: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं,

0: और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली,
1: जी
0: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है
1: अरे वाह
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
1: क्या
0: मैं चाहती हूँ कि सब देखें
1: फिल्म है, कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहेली।
1: जरूर से हम
0: हाँ
1: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
0: हाँ
1: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है। विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है
0: लगा,
1: विविध भारती में जब आप
0: बिल्कुल
1: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।
3: डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, अरे पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, टॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।
4: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
5: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
6: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुम।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
6: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

एफ एम बैंड 101.8 MHz पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को क्षितिज शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में बागवानी में कई प्रकार की सब्जियां और फूलों को उगाने के लिए सर्वोत्तम होती है। हालांकि भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है वो आपके बगीचे के लिए सुरक्षित रहने के लिए उसके लिए अच्छी तैयारी आपको करनी होगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और इतनी गर्मी में आपके जो बगीचे हैं, आपके जो पेड़ पौधे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, हालांकि अलग अलग बागवानों के लिए गर्मियों का मौसम अलग अलग मायने रखता है, लेकिन हम सभी के लिए गर्मियों में कुछ आम चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि अपने बगीचों को अच्छी हालत में रखने और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान उनका

आनंद लेने के बीच समय और मेहनत का सही संतुलन बनाना। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इसी से जुड़ी कुछ चीज़ों पर, ताकि आपका जो बगीचा है वो खराब नहीं हो और इस ग्रीष्म ऋतु में आप उन पेड़ पौधों का भरपूर आनंद ले सके। साथियों, गर्मी के मौसम में आपके बगीचे की मिट्टी की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का एक बेहतरीन तरीका है उसमें जैविक पदार्थ मिलाना। पौधे लगाते समय खाद या मिट्टी सुधारक पदार्थ जरूर डालें, ताकि मिट्टी में नमी और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाए। इससे पौधों तक पोषक तत्वों का बेहतर तरीके से पहुंचना भी आसान हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, खाद सूक्ष्म जीवों और केंचुओं जैसे अन्य लाभकारी जीवों के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है और जड़ों को कीटों और बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है। साथ ही दोस्तों, गर्मियों में पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय कब होता है, ये सवाल बागवानी की दुनिया में सबसे अधिक बार पूछा जाता है। पानी बचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पौधों को पर्याप्त पानी मिले, बगीचे में पानी देने का सबसे अच्छा और सही समय जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आइए उसी के बारे में हम जानते हैं। पौधों को वृद्धि और उनमें पानी बनाए रखने के लिए सही समय पर पानी देना आवश्यक है। पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब मौसम ठंडा होता है। इससे पानी जड़ों तक पहुंच पाता है और मिट्टी में रिस कर नीचे चला जाता है, जिससे वाष्पीकरण के कारण पानी की बर्बादी कम होती है और इसके परिणाम स्वरूप पौधों को पूरे दिन पानी मिलता रहता है, जिससे वे सूरज की गर्मी का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों, बागवानी से जुड़ी एक गलत धारणा है कि सुबह पानी देने से पौधे झुलस जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। अधिकांश क्षेत्रों में इतनी तेज धूप नहीं पड़ती कि पानी की बूंदें पौधों को झुलसा सके। हालांकि यदि आपके क्षेत्र में तेज धूप पड़ती है तो पानी की बूंदें सूर्य की रोशनी में पहुंचने से पहले ही गर्मी में वाष्पित हो जाएगी। गमलों और लटकने वाली टोकरियों में लगे पौधों को आमतौर पर जमीन में लगे पौधों की तुलना में अधिक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए कंक्रीट और टेराकोटा के गमलों में लाइनिंग आप लगा सकते हैं या फिर उन्हें अंदर से पेंट कर सकते हैं। गमलों में लगे पौधों को ठंडी जगह पर रखें और पानी को रोके रखने के लिए नीचे आप एक तस्तरी भी रख सकते हैं। तो साथियों, इसके अलावा पानी की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए कुछ सिंचाई उपकरण भी मौजूद है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम था आंटी नंबर वन। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। साथियों, पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए सर्वोत्तम सिंचाई तकनीकों का उपयोग करना भी आवश्यक है। साथ ही ये पानी की कमी की समस्या से निपटने में भी मदद करता है। जैसे कि आप चाहें तो स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग लॉन को पानी देने और बिना पौधे वाले क्षेत्रों को अच्छी तरह भिगोने के लिए

किया जाता है। स्प्रिंकलर बगीचे के अधिकांश क्षेत्रों को समान रूप से कवर करते हैं और आपके सभी पौधों को पानी देने का एक प्रभावी तरीका है। साथ ही आप चाहें तो वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को संग्रहित करने और उपयोग करने का एक बहुत ही कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। वर्षा जल शुद्ध होता है और खनिजों से भरपूर होता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। अपने पौधों के लिए पानी का एक तैयार स्रोत बनाने के लिए अपने घर की नाली में एक रेन बैरल आप जोड़ सकते हैं और उससे आप जो बारिश का पानी है उसको स्टोर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा आप सीप होज का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पानी रिसने वाली नली। ये नली में बने छेदों से पानी को सीधे मिट्टी में रिसने दिया जाता है। इन्हें मिट्टी या मल्च के नीचे दबाया जा सकता है। इससे गर्मियों में अनावश्यक वाष्पीकरण से भी बचा जा सकता है और इसका उपयोग पंक्तियों में लगे पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। ये भारी मिट्टी में सबसे अच्छा काम करती है क्योंकि पानी अगल बगल फैलता है और हल्की मिट्टी की तुलना में अधिक क्षेत्र को कवर करता है। साथियों, सीप होज का एक और फायदा यह है कि ये पौधों की जड़ों को सीधे पानी पहुंचाता है। इसके अलावा आप चाहें तो स्वचालित सिंचाई उपकरणों का भी उपयोग कर सकते हैं, जिनमें पानी को बूंद बूंद करके पौधों को पहुंचाया जाता है। इसमें समय और मेहनत की भी काफ़ी बचत होती है। तो साथियों, इसके अलावा आप पुनर्चक्रण यानी जल का पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं। ये भी पर्यावरण के अनुकूल एक तरीका है। पीने के गिलास, भाप बनाने या खाना पकाने से प्राप्त पानी का उपयोग पौधों को पानी देने में किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, अपने बगीचे में छाया लगाने के लिए आप शेड का उपयोग कर सकते हैं। शेड लगाने से पौधों को गर्मी से राहत दिलाने में मदद मिलती है। हालांकि सब्जियों की वृद्धि धूप के अनुकूल होती है, लेकिन बहुत अधिक धूप पौधों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो साथियों, शेड बनाने के लिए आप एक छायादार कपड़े का उपयोग भी कर सकते हैं, जो कि आप आवश्यकता अनुसार लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो इससे भी अगर आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप तेज है, तो आप उस शेड को लगा दें ताकि पौधों पर सीधे धूप का असर नहीं हो। साथ ही दोस्तों, पौधों को पानी देने के साथ साथ खाद भी जरूरी देनी होती है। खाद डालने से वे उन्हें हाइड्रेटेड और स्वस्थ रखने में मदद करती है। और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो फल देने वाले और फूल देने वाले पौधे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक होती है। पौधों के लिए खाद, नारियल का बुरादा या पीट मॉस जैसी जैविक सामग्री पानी सोख लेती है, जिससे नमी बनी रहती है। आपके पौधे भीषण गर्मी या सूखे दिनों में इसका उपयोग कर सकते हैं और आप आसानी से घर पर भी खाद बना सकते हैं। साथियों, खाद बनाने के फायदों में एक ये भी है कि इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, हवा का संचार बढ़ता है और बगीचे का समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जिससे आपके बगीचे को दीर्घकालिक सफलता भी मिलती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी छत के ऊपर जगह है तो आप अपने छत पर भी बागवानी कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपको पौधों से जो ऊर्जा मिलती है वो मिलेगी, साथ ही आपका घर जो है वो भी नॉर्मल से थोड़ा ठंडा रहेगा, क्योंकि अगर आप छत पर बागवानी करते हैं तो ये आपके घर को भी ठंडा रखने में मदद करती है। जब आप अपने छत पर पेड़ पौधे लगाते हैं तो गर्मी बेहतर तरीके से अवशोषित होती है और इमारतों को पारंपरिक तारकोल और बजरी वाली छतों की तुलना में बेहतर इंसुलेशन मिलता है। इसलिए दोस्तों, गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी से निपटने का एक पर्यावरण अनुकूल समाधान छत पर बागवानी करना है, जो आपके घरों के अंदर के उच्च तापमान को नियंत्रित करने और कम करने में भी मदद कर सकता है। तो साथियों, अभी वक्त हो चला है एक अल्पविराम का और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

0: सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों अब बात करते हैं आलू की। जी हाँ दोस्तों, आलू नाम तो आप सबने सुना होगा। हर घर में आलू का उपयोग किया जाता है कई तरीकों से, चाहे सब्जी में या फिर उसकी हम चिप्स बनाते हैं, कुछ लोग पकोड़े बनाते हैं, या फिर और भी कई सारी ऐसी डिशेज हैं जो आलू को लेकर बनाई जाती हैं। साथियों आलू एक ऐसी फसल है जिसका वैश्विक स्तर पर भी बहुत अधिक महत्व है। आलू की व्यापक खेती और खपत से सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख उद्देश्यों में भी योगदान मिलता है, जैसे कि भुखमरी को खत्म करना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और आर्थिक अवसरों को आगे बढ़ाना। दोस्तों आलू न केवल कई लोगों के आहार का मुख्य हिस्सा है बल्कि ये अपनी मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से रोजगार और टिकाऊ आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण अवसर को भी प्रदान करता है। इसी लिए आलू के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए 30 मई यानी आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस का आयोजन किया जा रहा है। साथियों आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है जिसका विषय है जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। साथियों ये विषय एंडीज पर्वतमाला से लेकर अफ्रीका, यूरोप, एशिया और उससे आगे तक के किसानों और मूल्य श्रृंखला के हितधारकों की आजीविका को मजबूत करने में आलू की भूमिका को दर्शाता है। आलू की खेती और मूल्य श्रृंखला के विकास को बढ़ावा देकर ये फसल गरीबी कम करने, लचीलेपन और अधिक समावेशी और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों में योगदान देती है। तो साथियों आइए जानते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो के बारे में। दोस्तों 30 मई को हम आलू पर प्रकाश डालते हैं। आलू जिसका वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम एल है, एक ऐसी फसल जिसका सेवन अरबों लोग नियमित रूप से करते हैं। आलू विश्व स्तर पर विभिन्न कृषि प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण फसल है जिसमें एंडीज पर्वतमाला में हाथ से विभिन्न पारंपरिक किस्मों का उत्पादन करने वाले छोटे किसानों से लेकर विभिन्न महाद्वीपों में विशाल वाणिज्यिक मशीनीकृत फार्म शामिल है। आलू विश्व भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों की खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ आजीविका और रोजगार में भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। साथियों 2008 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाने का ये एक अवसर है। इस अवसर का उपयोग भूख और गरीबी से लड़ने और कृषि खाद्य प्रणालियों के पर्यावरण के खतरों से निपटने में आलू की फसल के महत्व को बताने के लिए किया जाता है। आलू की व्यापक विविधता की रक्षा में छोटे पैमाने के पारिवारिक किसानों जिनमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण अनुपात है की भूमिका को भी मान्यता दी जाएगी। साथ ही आलू की खेती और उपभोग के सांस्कृतिक और पाक संबंधी पहलुओं का भी जश्न आज के दिन मनाया जाता है। तो साथियों अभी वक्त तो चला है मनोरंजन का, उसके बाद आलू के बारे में कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य आपको बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे।

तूने मुझे नजरों से अपनी दूर किया, मेरे प्यार का शीश महल तूने एक पल में

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेवफा सनम से गीत, आवाज थी नितिन मुकेश की। गीत के बोल लिखे थे योगेश ने और संगीत था निखिल विनय का। साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2008 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया, ये देखते हुए कि आलू विश्व की आबादी के आहार में एक मुख्य भोजन है और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और गरीबी उन्मूलन में आलू की भूमिका पर विश्व का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 25 नवंबर 2005 को अपनाया गया संबंधित प्रस्ताव, जिसका उद्देश्य वर्ष के कार्यान्वयन को सुगम बनाना था, उसने गरीबी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और भूख को हराने में आलू के योगदान के बीच मौजूद संबंध के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर पुष्टि की। साथ ही दोस्तों, यह आशा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का दर्जा आलू के लिए वही करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष ने उसके लिए किया था, यानी प्रदर्शनियों, शैक्षिक कार्यक्रमों, फिल्मों, प्रकाशनों और हमारे खाद्य संसाधनों के लिए बहुराष्ट्रीय प्रयासों के बारे में अधिक जन जागरूकता को प्रेरित करना। वर्ष 2008 को पेरू में आलू का राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था। 30 मई 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के जीवन में आलू के योगदान पर प्रकाश डालना था और इसका विषय था विविधता की कटाई, आशा का पोषण। तो साथियों, ये थी आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आलू से जुड़ी कुछ जानकारी। अब भी वक्त तो चला है अल्फिराम का और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह कर लेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले देश के तटीय राज्य गोवा के लिए 2 तारीखों का विशेष महत्व है। पहली 19 दिसंबर और दूसरी 30 मई यानी आज का दिन। ये दोनों ही कोई सामान्य तारीखें नहीं है। ये तारीखें गोवा की मुक्ति से लेकर उसकी उन्नति का द्योतक है। 19 दिसंबर गोवा की आज़ादी का दिन और 30 मई जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसलिए दोनों तारीखें गोवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, 19 दिसंबर 1961 की तारीख हिंदुस्तान की आज़ादी के समय तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहे गोवा की आज़ादी की दास्तां को बयां करती है। दूसरी 30 मई यानी आज के दिन 1987 गोवा के भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बनने की गवाह। यही तारीख गोवा का स्थापना दिवस भी मानी जाती है। लेकिन 1961 से लेकर 1987 तक ये लंबा वक्त क्यों लगा, आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कहानी। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा

गोवा अपने सुंदर समुद्री तट और मशहूर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। 1961 के पहले तक गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। लगभग 450 सालों तक पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया। भारत की आज़ादी के बाद जब पुर्तगालियों को गोवा को भारत को सौंपने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया और इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दोस्तों, गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। इसके दक्षिण में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला और पूर्व में पश्चिमी घाट तथा पश्चिम में अरब सागर है। पणजी, मडगांव, वास्को, मापुसा और पौंडा राज्य के प्रमुख शहर हैं। राज्य में 1,424 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में घने वन हैं। गोवा का उल्लेख भारतीय संस्कृति के कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के समय दक्षिण कोंकण क्षेत्र में गोवा को गोपराष्ट्र यानी गाय चराने वालों के देश के रूप में वर्णित किया गया है। कई अन्य संस्कृत श्लोक और धार्मिक ग्रंथों में इसे गोमांचल, गोपकपट्टम, गोपकेपुरी, गोवापुरी, गोवाराष्ट्र और गोमांतक आदि नामों से भी उल्लेखित किया गया है। साथियों, क्या है गोवा का राजनीतिक इतिहास और कैसे हुई गोवा की मुक्ति और क्यों मनाया जाता है 30 तारीख को ही उसका स्थापना दिवस, इस सब के बारे में साथ ही गोवा से जुड़ी कुछ जानकारियां भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए, जाने तमन्ना।

साथियों, अभी आप सुने थे अभिजीत भट्टाचार्य और अनुराधा श्रीराम की आवाज में गीत। फिल्म का नाम था बीवी नंबर वन। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था अनु मलिक का। साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे गोवा स्टेटहुड डे के बारे में, यानी गोवा के स्थापना दिवस। साथियों, बात करते हैं गोवा के राजनीतिक इतिहास की। तो गोवा के प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास को अगर हम देखें तो ये सातवाहन साम्राज्य का अंग रहा है। उसके बाद कदम मलखेड़ के राष्ट्रकूटों, चालुक्य और सिलाहार राजवंशों का राज इस पर रहा। 14वीं शताब्दी के अंत में यादवों का साम्राज्य समाप्त हुआ और दिल्ली के खिलजी वंश ने यहाँ शासन किया। नो इंडिया भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए 1498 में वास्को डी गामा और उसके बाद कई पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचे थे। 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने विजयनगर के सम्राट की मदद से गोवा पर आक्रमण करके इसे कब्जा लिया। साथियों, 15 अगस्त 1948 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, किंतु पुर्तगाली शासक गोवा वासियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। भारत सरकार के कई बार आग्रह के बावजूद जब पुर्तगाली नहीं माने तो फिर ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई और अंततः 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया गया और इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से ही 30 मई का दिन गोवा का मुक्ति दिवस यानी स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्थापना के बाद पणजी को गोवा की राजधानी और कोंकणी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथियों, गोवा के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां आपको देंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्पविराम।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, गोवा की मुख्य खाद्य फसल चावल है। इसके अलावा दालें, रागी और कुछ अन्य खाद्य फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती है। गोवा में नारियल, काजू, सुपारी और गन्ने जैसी फसलों के साथ साथ यहाँ पर अनानास, आम और केला भी पाया जाता है। गोवा के सभी गांवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है और 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। गोवा में लघु उद्योगों की संख्या काफ़ी है और राज्य के खनिज उत्पादों में फेरोमैग्नीज, बॉक्साइट और लोह अयस्क शामिल है। गोवा में मत्स्य की एक प्रमुख स्थान है क्योंकि 90% जनसंख्या यानी लगभग 1,00,000 लोग मत्स्य उद्योग में कार्यरत हैं। गोवा की 7 प्रमुख नदियां जुआरी, मंडोवी, तेरेखोल, चापोरा, गलगीबाग, कुंभरजुआ नहर, तलपोना और साल है। गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 264 किलोमीटर और प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 280 किलोमीटर। बात करें गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों की तो कोलवा, कालनगुटे, वागाटोर, बागा, हरमल, अंजुना और मीरामार समुद्र तट गोवा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। पुराने गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और से कैथेड्रल चर्च, कावले, मार्डोल, मंगेसी और बंडोरा मंदिर भी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। गोवा में समृद्ध वन्य प्राणी उद्यान हैं जैसे बोंडला, कोटीगांव और मोलेम वन्य प्राणी उद्यान, भगवान महावीर अभ्यारण्य और चोराव में डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान भी है। साथियों, गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 15,00,000 के आसपास है। तो साथियों, ये थी गोवा से जुड़ी कुछ जानकारी। आज गोवा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। दोस्तों, अभी वक्त तो चला है फिर से मनोरंजन का, तो आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम साथ साथ हैं से गीत, आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति, अलगा याग्निक और अनुराधा पौडवाल की। गीत के बोल लिखे थे आर किरण ने और संगीत था राम लक्ष्मण का। साथियों, जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता है, क्योंकि बहुत से लोग खुद को

तो कहते हैं, लेकिन मुश्किलों के वक्त वे हमसे दूर हो जाते हैं या फिर नजरें बचाते हैं। लेकिन जो एक सच्चा मित्र होता है वो हमेशा आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, और यही गुण सच्चे दोस्तों को सिर्फ जान पहचान वालों से अलग करता है। साथियों, दोस्ती का असली महत्व सिर्फ खुशी के पलों में नहीं बल्कि मुश्किल समय में भी सामने आता है, और एक सच्चा दोस्त तब मदद और सांत्वना देता है जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वे ईमानदारी से सलाह देते हैं और अच्छे बुरे समय में हमारा साथ देते हैं। मुश्किल समय में झूठे दोस्त गायब हो जाते हैं। साथियों, एक सच्चा दोस्त जीवन में अनमोल खजाने के बराबर होता है। जब हमारे पास ऐसा साथी होता है तो हम अपने संघर्षों में कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। जीवन अनिश्चित हो सकता है, लेकिन एक वफादार दोस्त के मजबूत समर्थन से चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है, क्योंकि वही हमारे साथ हर वक्त खड़ा रहता है, चाहे वो खुशी के पल हो या दुख के। साथियों, जब कोई व्यक्ति आपके दुख, आपकी बीमारी या फिर समस्या के समय आपकी मदद करता है, तभी वो आपका सच्चा दोस्त कहलाता है। झूठे दोस्त अपने आप को हमेशा आपके साथ होने का दावा करेंगे, लेकिन जैसे ही आपको उनकी आवश्यकता रहेगी वो या तो भाग जाएंगे या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देंगे। तो ऐसे दोस्तों को हमेशा पहचाने और अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना दोस्त माने, मित्र माने, जो असलियत में आपके मुसीबत के समय में आपके काम आ सकते हैं। तो साथियों, अभी वक्त है फिर से मनोरंजन का, तो आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में गीत। फिल्म का नाम था हम तुम। गीत के बोल थे प्रसून जोशी के और संगीत था जतिन ललित का। तो साथियों इसी के साथ अब घड़ी ने इशारा कर दिया है और समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपने दोस्त क्षितिज को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं। आइए डालते हैं एक नज़र इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा पर।

दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा भारती। दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

शाम 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, उसके पश्चात न्यूज़ एट 9, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

श्रोताओं, ये थी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस का अंत।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख ले तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

FM 101.8 MHz पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

श्रोताओं, इसी के साथ वंदन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके पश्चात जिले की चिट्ठी व राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आम जन की धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, यह अभियान

0: अब भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाना जाना चाहिए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मशीनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों के साथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और पारदर्शी तरीके से ही कराए जाते हैं। वे आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से जयपुर में शिविर लगाए जाएंगे। 3 दिन चलने वाले इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की किस्त स्वीकृति और वितरित की जाएगी। ये शिविर जयपुर नगर निगम और एक निजी बैंक के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता में भी नगरपालिका कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं, तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने में भी सभी की भागीदारी को आवश्यक बताया। महाधिवेशन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के डी रेगुलेशन फेज 1 के तहत किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9000 आवेदनों में से 6000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आवेदनों को मंजूर करने के मामले में राज्य में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा, जहां लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की घोषणा की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन तथा उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण HDR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही जिले के एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। नागौर शहर के पास जोधपुर बीकानेर मार्ग पर आज दोपहर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा दुकोसी और राजुवास गांव के पास हुआ। दुर्घटना में कार में सवार 2 महिलाओं और 1 बच्चे सहित 4 की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रदेश में धूल भरी आंधी का दौर आज भी जारी रहा। सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में अचानक बदले मौसम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले अंधड़ की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से हुई, जिसके बाद इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक फैल गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
2: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप और गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गांव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है कि आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल धराशायी हो गए। राजधानी जयपुर में भी शाम को बादल छाए रहे, बिजली कड़कने के साथ ही धूल भरी आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है। पिछले 2 दिनों से जारी आंधी बारिश से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज करीब 30 जिलों के लिए आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के आसार जताए हैं। केंद्र ने आंधी और तेज हवाओं, बिजली चमकने के साथ लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आंधी बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का पहला चरण पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भवन का नवीनीकरण, प्रवेश और निकास मार्गों का पृथक्करण, नई पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग रूम का उन्नयन किया गया है। इस काम में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खान कलर ने तैयार किया है। जालौर जिले को बीते महीने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जिले का दौरा कर आम जन के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जालौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाई। पंचेरी गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं का धरातल पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए आम जन से इनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे सफलता की कहानियों को सुना। उन्होंने गांव का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों के साथ चाय पीकर चर्चा की। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जीवाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर को दिल्ली से सीधा रेल सेवा से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही जिलेवासियों की मांग बीते दिनों पूरी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जालौर से होकर गुजरने वाली दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने जालौर पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस गाड़ी का जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में ठहराव होगा। रोजाना चलने वाली इस गाड़ी से जालौर वासी अब जयपुर और दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे। वहीं गुजरात के भरूच, अंजार और गांधीधाम तक भी सीधी पहुंच हो सकेगी। गाड़ी की शुरुआत होने से आमजन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान आदर्श अमृत सरोवर बागोड़ा पर श्रमदान रखा गया। जिला स्तरीय आयोजन में प्रभारी मंत्री के बिश्नोई शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। अभियान के तहत जिले भर में रोजाना श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। हरियालो राजस्थान के तहत जिले में इस सीजन में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री के बिश्नोई ने ये जानकारी देते हुए आम जन से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री बिश्नोई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बागोड़ा स्थित खेतलाजी तालाब पर पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी सिलसिले में बीते दिनों आहोर में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अभियान में पशुपालन विभाग की ओर से जिले की 308 गौशालाओं में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिले के भेटाला में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत तंबाकू और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जालौर जिले में मतदाताओं द्वारा स्वगणना पोर्टल पर जनगणना जानकारी दर्ज की गई। 1 से 15 मई तक चले स्वगणना अभियान के तहत अब जनगणना कर्मी लोगों के घर घर पहुंचकर सूचना अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही मकान पर नंबर लिखने का काम किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पिछले दिनों एक दिवसीय प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और रोजगार विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में 110 बेरोजगारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। जिले भर में इन दिनों सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी के तीखे तेवर बने रहने से आम जन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने से दिन के समय बाजार और सार्वजनिक स्थान सूने दिखाई दे रहे हैं। जालौर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो, भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावण सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियां ने सरकार जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माय आज दूजा दिन ही धूलो उड़बा सागे आंधी चाली। सरहदी हलका माय रेत रात तूफान और जिंदगी माथे असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि भारत री फौज आला दर्जा री सावचेती राख रही है और जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर शुरू करण बाबत ही तैयार है। वे आज पुणे रा खड़कवासला री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी माय 150वां बैच री पासिंग आउट परेड माय बोल रहा है। ये मौके जनरल द्विवेदी कहो कि ऑपरेशन सिंदूर उकसावा रो जवाब सटीक और पक्का इरादा सागर देवण रा भारत रा बूता रो दर्शाव कीनो है। वह कहो कि वो अभियान हाल ही चाल रियो है। जनरल द्विवेदी पास आउट वेवन वाला कैडेटों व्यावसायिकता नेतृत्व और देश सेवा रा आला मानका ने बनाया रखन बाबत कहो। फौज रा मुखिया ई कोर्स ने पास करन वाली महिला कैडेटा री सराहना करता थका कहो कि हिम्मत पक्का इरादा और फौजी बेहतरी बगैर लिंग भेद रो गुण है। अकादमी 353 कैडेट स्नातक री डिग्री हासिल कीनी। इस आगे दोस्ताना रिश्ता वाला देशा रा 21 कैडेटा नई डिग्री दी रीजी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान ने खेता किसाना और गांवा ने जोड़बा रो मोटो अभियान बनावन बाबत कहो है। श्री चौहान आज नई दिल्ली माए खेत बचाओ अभियान री तैयारियां रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। वह कहो कि ई अभियान रो मकसद खाद ने बुद्धिमानी काम लेवन, किसाना ने मौसम उ जुड़ी जानकारियां और राय टेम सर देवन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो गांवा री जनता ताई सीधो पुगावनो है। खेत बचाओ अभियान 1-30 जून ताई आखा देश माय चलायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय काल समारा 11 बजे विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैटा। इनरो प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री रा दफ्तर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल सागे न्यूज ऑन AIR ऐप माथे ही करियो चावेला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि देश माय चुनाव संविधान चुनावी कानून रे मुजब हर साफ कोई सागे कराया चावे है। वे आज नई दिल्ली माय निर्वाचन आयोग री नुमाइंदगी करण वाला वकीलां रा दूजा राष्ट्रीय सम्मेलन माय बोल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहो के लोकसभा चुनाव रे दौरान साफ गोई जवाबदेही और निपक तरीका वोट देवण तय करण सारू करीब 1,08,00,000 सरकारी कर्मचारी तैनात करया जावे है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE रो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून नु काम करण लगेला। विद्यार्थियों री परीक्षा री कॉपियां रा सत्यापन और उजू जंचावण री साफ प्रक्रिया तय करण सारू ओ पोर्टल शुरू करियो जा रहे है। जयपुर माय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा तेत पात्र रेहड़ी पटरी वाला ने कर्ज मुहैया करावण सारू नगर निगम और एक गैर सरकारी बैंक कानून मिलर 1 जून नु खास शिविर लगाया जावेला। 3 दिन रा आ शिविरा माय पात्र लोगों ने कर्ज री दूजी किस्त दी जावेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका माय काम करण वाला ने सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पहुंचावण रा काम माय खास कड़ी बताया है। वे आज जयपुर माय राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन रा महाधिवेशन माय बोल रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन री कामयाबी माई नगरपालिका कर्मचारियां रो खास काम रहो है। श्री शर्मा कहो कि स्वच्छ भारत अभियान देश माय साफ सफाई रा काम ने जनता रो आंदोलन बना दीनो है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहे।
0: मुख्यमंत्री विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प साचो करण माए सगला री भागीदारी ने जरूरी बताई। कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य रा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्राई मौजूद रहा। प्रदेश माए निवेश सारु राज निवेश पोर्टल माथे मिली 9000 अर्जियां मायू 6032 मंजूर कर ली रिची है। अर्जियां मंजूर करण रा काम माए जयपुर प्रदेश माए अव्वल रहो, जठे मिली करीब 2000 अर्जियां मायू 1332 ने मंजूरी दे रिची। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आ जानकारी दीनी। पुलिस मुख्यालय बेहतर काम करण वाला 123 अहलकारां और कर्मचारियां ने महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल ऊन नवाजन रो ऐलान किनो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री ओर निकाली जिया हुक्म रा मुजब पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक ऊ सिपाही लेवल ताई रा अहलकारां और कर्मचारियां रो मान करियो जावेला। नवाजी जावन वाला अहलकारां माए पुलिस री सिखावन देवन रो काम देख रहा अतिरिक्त महानिदेशक HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह शामिल है। 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश माई नैरी नैरी ठोड़ा योगाभ्यास रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। आज सिरोही जिला रा एक विश्वविद्यालय माए योगाभ्यास रो कार्यक्रम रखी जियो। इनमाए विद्यार्थी, शिक्षक और जनता उमाव सागे भाग लीनो और योग ने रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावन री सौगन लीनी। नागौर कने जोधपुर बीकानेर गेला माथे आज दोपहर कार रे ट्रक री फेंट माए आ जावनो 4 जना री मौत वेगी। पुलिस रे मुजब डुकोसी और राजूवास गांव बीचे व्या हादसा रे कारण कार में सवार 2 महिलाओं और 1 बच्चा समेत 4 जना री मौत वेगी। अरब मौसम, प्रदेश रा पाकिस्तान री सरहद लागियोड़ा और उत्तराद आतुनी हलका माए आज दोपहर री पोर जोरदार रेतीलो तूफान आयो। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिला

0: शुरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है कि आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चुरू।
1: कई थोड़ा 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार हूँ बायरो बाजो चिणो धूलारो गुबार छा जावन रा कारण दूर ताई नजर नहीं आयो। इस दौरान लोगों ने दिन में ये गाड़ियां ने लाइटा चासनी पड़ी। जोरदार बायरो बाजनों के थोड़ा रोखड़ा टूट गया और होल्डिंग्स उखड़ गया और बिजली री पूर्ति माथे असर पड़ियो। राजधानी जयपुर में ये सिंजानी पोर बादला मंडी गया, धूलो उड़ियो, आंधी चाली और कठे कठे बारिश हुई। आंधी बारिश पारो 10 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। मौसम केंद्र जयपुर प्रदेश में आज करीब 30 जिला सारू आंधी बारिश सागे कठे कठे ओला पड़बार आसार चताया है। केंद्र आंधी चालन जोरदार बायरो बाजन और बिजली चमकन री बगत सावचेती राखण सारू कहो है। मौसम केंद्र रे मुजब आंधी बारिश रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवन री संभावना है। श्री गंगानगर जिला रा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा काम रो पहलो दौर पूरो फेंक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत स्टेशन भवन ने बेहतर बनावन, स्टेशन माए दाखिल भेवन और बाहर जावन रा न्यारा न्यारा दरूजा बनावन, गाड़ियां उभीकरण री नूवी व्यवस्था विकसित करण समेत कई खास काम करी ज्या जामाथे करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आयो। इस आगे वठे करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्चों 12 मीटर चौड़ो पैदल पुल बनायो जा रियो है और सूरज री रोशनी 50 किलोवाट बिजली पैदा करण री मशीनाई लगाई जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माय आज दूजा दिन धूलो उड़वा सागे आंधी चाली। सरहदी हल्का माय रेत रा तूफान और जिंदगी माथे असर पड़ियो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी।
3: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी सुनने वाले सगले किसान बहन और पूजा बहन और
7: विनीता बहन जाए खड़ा गा
6: राम राम राम। विनीता बहन घने दिनों बाद मिलना हो आप और
7: बिल्कुल
6: गर्मी भी तो कितनी बढ़

0: सही है,
1: बहुत ज्यादा गर्मी है ना, तो
0: गर्मी का दिन है, गर्मी पड़ रही है और साथ रे मोए नौतपा भी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: नौ
0: हम
1: दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़
0: जी
1: रही
0: जी
1: है।
0: जी नौतपा 4-5 दिन हो गया है और आपको पूरा असर दिखा रहा है नौतपा भी,
1: बिल्कुल
0: लेकिन समय के अनुसार मौसम के अनुसार नौतपा होना भी जरूरी
1: जरूरी है,
0: है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि ये सो आपरे पर्यावरण रे मोए संतुलन बनो
1: बनो
0: रहे, आपरो काम है कि आप मौसम रे अनुसार खुद रो जाप्तो रख जे, आपरे परिवार रो ध्यान रख जे और पशुधन रो ध्यान रख जे।
1: बिल्कुल।
0: तो आप में कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा बात तो कर दे छो, आज भी आप इस बात कर सो कि आप और किसान भाई है और सारा ग्रामीण भाई है, साथ में शहरी भाई जो भी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं वहां सो ऐस कहना है कि गर्मी रे मोए आप पूरा ध्यान रखें, तरल पदार्थों रो सेवन करें, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: ORS है, नींबू पानी है, नारियल पानी है,
1: छाछ
0: छाछ
1: है,
0: है,
1: बिल्कुल
0: या बेल रो शरबत आया करे, वो भी बहुत ठंडो रहा करे, पेट
1: बिल्कुल
0: ने ठंडो
1: बिल्कुल
0: रखिया करे, तो वो जरूर पिए। ये सर जब भी घर से बाहर जावे तो आपके साथ में पौने की बोतल तो हमेशा साथ में रखे और थोड़ी थोड़ी देर में पौने पीवता रहे,
1: बिल्कुल
0: ताकि आप शरीर में पौने की कमी तो बिल्कुल नहीं हुए। और खान पान की बात कर जाए तो जो को आप इस समय हमें आया करे खरबूजा है, तरबूजा है, खीरा ककड़ी है, जिक्र वो है कि पौने की मात्रा ज्यादा आया करे, उग्र सेवन ज्यादा करे ताकि आप शरीर में पौने की मात्रा बढ़ी
1: बढ़
0: रहे।
1: जाए
0: और
1: बिल्कुल।
0: जितो हो सके आपका भाई है बहनों है सब मसालेदार खानो है या भारी खानो है जो पचन में लगावी
1: समय लगावे
0: एणो भोजन करण से बचे, ताकि और एकदम हल्को भोजन करें ताकि आप अपना शरीर ने स्वस्थ रख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और हमेशा बात ऐ कर जाए कि आप जो को भी काम है आपको 10 बजे से पहले या शाम रह कर जाए, लेकिन
1: बिल्कुल
0: घर परिवार में बैठा हो, गृहस्थी में बैठा हो, दिन में भी काम पड़ जावे, तो एनी टाइम अगर आप किसान भाई ना या आप ग्रामीण भाई ना घर से बाहर निकलना पड़ जावे तो वो ये ज्यादा ध्यान रखे कि वो आप पूरे शरीर ना ढक के निकले, हल्के रंगरा कपड़ा पहने और आप सर ना ढक के रखे, टोपी लगाए रखे या सूती गमछो या कपड़े से भी ना ढक देवे। और जब घर में घर लौटन मते एकदम सो ठंडे AC रमोए या ठंडे कमरे रमोए या सीधे कूलर रमोए नहीं आवे।
1: बिल्कुल, और पेड़ पानी भी नहीं घुल रहे जैसे
0: जी
1: तरह से,
0: बिल्कुल एकदम सही, कभी नहीं आप गांव में भाषा के पेंडो कराया हो तो उस बाद में पानी नहीं पीना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: सही बात है। और लू से बचण रहे वास्ते प्याज रो इस्तेमाल करना तो सबसे कारगर उपाय है।
1: बिल्कुल
0: ऐसा चीजों आप घर में उपलब्ध हो भी तो आप किसान भाई सब जिको प्रोग्राम कार्यक्रम सुन रहा है वो ये चीजों का उपयोग करे, थोड़ा सा जापतो रखे तो बहुत ही उचित है।
1: बिल्कुल
0: और जबकि आप महिलाओं हो तो महिलाओं ने यह भी कहना है कि महिलाओं आपकी त्वचा पूरा ध्यान रखे, और इस वास्ते अगर घर से बाहर निकले कानो भी निकले 10 बजे से पहले चाहे 10 बजे के बाद तो सनस्क्रीन यानी कि धूप से बचाव क्रीम रो उपयोग जरूर करें ताकि आप और सुंदरता बनोड़ी रहे।
1: बिल्कुल
0: तो ऐ तो हुई बात आप और हमें आप बात कर जे किसान भाइयों से, अपना किसान भाई है हमेशा नवाचार करता रहा करे, क्योंकि तो नवाचार करना भी जरूरी है। नवाचार करने से जो अपना किसान भाई है जिसको नई नई तकनीकों ने अपनावी, नई नई चीजों ने अपनावी, नया तरीका अपनावी और उन्होंने ये जिसको तकनीक अपनावी या उपाय करे ये ना सरकारी सहायता भी पूरी मिलिया करे, जिसके
1: बिल्कुल
0: ना आर्थिक सहायता के साथ में प्रशिक्षण भी मिलिया करे, तो नवाचार करना बहुत ही उत्तम
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: जो आप बात कर जी ड्रोन री या सेंसर तकनीक री या बात कर जी आप जैविक खेती री, ये सारी चीजों है हमेशा ही खेती नो एक नयो रूप दिया करे और संसाधन नो यानी कि जो पानी है अपर मेहनत है लागत है इन्हों भी बचाया करे और उपज में भी सुधार होया करे। जिके मैं सबसे पहले तो बात कर जाए जो GPS या मृदा सेंसर या ड्रोन री, तो ये सो अपर मिट्टी रो स्वास्थ्य और नमी री पूरी अच्छे से जानकारी मिल जावे ताकि आपको आगे आप कार्यक्रम सही तरीके से कर सक जाए। और रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करने से तो हमेशा की होया करे कि कुछ ऐडा भी जीवाणु होया करे जो आप खेती वास्ते उपयोगी होगी तो वो भी नष्ट हो जाया करे,
1: अच्छा
0: इन वास्ते ये जगह मत है लेडी बग या परजीवी ततैया जरा लाभकारी कीटर उपयोग करने से या सूक्ष्म जीवी समाधान का उपयोग भी कियो जावे और यह
1: जी
0: आप खेती वास्ते उपयोगी है। जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है जिको सब कैचुआ खाद कोई,
1: बिल्कुल
0: और जिको स्वदेशी बीज प्रणाली है जिके से आप आगे खेती करने, तो ये सब चीजों से लागत में भी कमी आवे और मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी
1: उर्वरता
0: बढ़िया
1: बढ़ जाए
0: करे, बढ़िया करे
1: बिल्कुल
0: मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वास्ते यानी स्वास्थ्य ने बढ़ाने वास्ते आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वास्ते आप जो भोजन कर रहे हो वो स्वस्थ होवे और साथ में भोजन देव नाड़ी जो मिट्टी है वो भी स्वस्थ रहे, ये वास्ते आज समय रे मोए जैविक खेती मांग जैविक खाद की मांग बढ़ रही है,
1: बिल्कुल
0: बहुत जरूरी है क्योंकि तो रासायनिक मुक्त भोजन होना बहुत जरूरी है। ये सो आपरे शरीर में प्रतिरक्षा जिके ने आपो कहजे इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया करे जो कि आपने बीमारियों से लड़ने के वास्ते तैयार करिया करे। तो बहुत जरूरी है कि आपोरा किसान भाई जैविक खेती की ओर बढ़े और आपोरे देश जनता जैविक उत्पादन और प्रयोग करे और ये सो जल प्रदूषण की समस्या भी कम हो से, तो यानी कि प्रदूषण भी कम हो रहे हुए है, मिट्टी भी सही रह रही है और इन साथ रमो है जो इरा आर्थिक लाभ है वो भी बढ़िया है क्योंकि जैविक उत्पादन और जो बाजार में भाव है वो सामान्य फसलों की तुलना में ज्यादा मिलिया करी। अपरा किसान भाई हमेशा ये बात उठ डरी कि जैविक खेती सुकरण सु आप मुनाफो कम हो से, लागत ज्यादा आसे और मेहनत नहीं लग से, उपज कम हो से तो अपन फायदो कम हो से, लेकिन ऐसी बात को नहीं। हमेशा अगर आप देख जाए तो बाजार में अगर एक तरफ जैविक खेती री वस्तुआ पड़ी है और एक तरफ रासायनिक खेती री पड़ी है तो जो जैविक खाद रहा उत्पाद है वो महंगा बिक से। तो इस वास्ते वैश्विक स्तर मत में भी यानी कि विश्व स्तर मत में भी जैविक खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ रही है और भारत तो इनमें अग्रणी है ही। तो ये प्रकार से जैविक खेती ने अपनाना और आधुनिक कृषि तकनीकों रो प्रयोग करना ये सो खाद्य सुरक्षा तो वैज करे, साथ में आप आपके आने वाली पीढ़ियों है उम्र वास्ते भी मिट्टी की उर्वरता ने और मिट्टी के स्वास्थ्य ने भी बनाए रख सकते। तो विनता बहन आप बातों तो आगे भी जारी रख सो, पहले सुनजे राजस्थानी लोकगीत।

0: तो आपा सुनियो राजस्थानी लोकगीत, आपा बात करा था किसान भाइयों से। भाई ग्रसित तो देखो, आपा बात करो कि भाई आपा रे कृषि जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था री रीढ़
1: जी बिल्कुल
0: है, और देश में जो आधी से अधिक जो आबादी रो भरण पोषण जो है वो आपा रे कृषि से जोया करे।
1: जी जी जी सही बात है।
0: तो ये बात से जो है डिजिटलीकरण और जलवायु जो परिवर्तन है और प्रति अनुकूल कारण कारण भारत जो है कृषि में ऐतिहासिक परिवर्तन करे, और जो देश की रीढ़ की जो हड्डी कहे जाने वास्ते अपना किसानों ने सशक्त बनाने वास्ते भारत सरकार किसानों के वास्ते सरकारी योजनाओं ने मजबूत कर रही है, जिसके
1: जी
0: सु अपर किसान भाइयों ने जो आय है वो
1: बढ़
0: स्थिर
1: जाए।
0: रहे,
1: जी
0: उन्नत
1: बिल्कुल।
0: हुए, और जो उम्र है तकनीकी जो सिंचाई का जो साधन है या पारदर्शी जो डिजिटल है वो बाजारों में शामिल हुए और उन्होंने जो आय में वृद्धि हुए। मौसम ना जो है और जो अस्थिरता भी या बदलता वैश्विक बाजार जो है दौर है, तो इरे मोय जो है किसानों ना जो मोरी आय ना बढ़ाने वास्ते सरकार जो है काफी सशक्त प्रयास कर
1: कर
0: रही
1: रही है,
0: है।
1: सही बात है आपने।
0: काफी अड़ी योजना में जो आप बात करो तो प्रधानमंत्री किसान योजना
1: जी
0: ए किसानों की आय वास्ते सहायता करी, और प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि केंद्र जो सरकारी किसानों ना एक अड़ी योजना है जिसके तहत भूमि धारक किसान जो परिवार है वो ना हर साल जो है 6,000 रुपया मिले,
1: अच्छा,
0: और
1: और तीन
0: ए
1: किस्तों में लिया
0: बिल्कुल
1: करें।
0: तीन किस्तों में मिले।
1: हाँ
0: ए
1: जी
0: जो
1: जी सर।
0: राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 2,000 रुपये तीन किस्तों में
1: मिलिया करें।
0: मिलिया
1: जी
0: करे,
1: जी जी
0: और ईरोज को उपयोग है वो कृषि सामग्री या घरेलू जरूरत जो सामान जो खरीद है वो वास्ते किए जावे, और ये धनराशि जो अनौपचारिक ऋण मत है निर्भरता कम हो गई है, जिसके सु अपर भारत रमो जो छोटा और सीमांत भूमि धारक है उम्र वास्ते स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। क्योंकि आपको देखता पहले जो पहले समय में लोग जो है जमींदारों मत है निर्भर रहता
1: निर्भर उस ऋण लेता और बच्चे उनमें।
0: बिल्कुल, और
1: सही बात
0: उम्र
1: है।
0: ऋण भी लेता तो उम्र मत है आगे से आगे जो उम्र ब्याज दर इतनी
1: पीढ़ी
0: ज्यादा
1: ब्याज
0: होती
1: चढ़ते
0: कि भाई उम्र मत हो कर्जो चढ़ते ही
1: ही
0: चढ़ते।
1: रहते हो,
0: तो इसु करके जो है एक किसान भाइयों
1: ऋण
0: ने
1: मुक्ति
0: लो
1: हो गई है
0: बिल्कुल
1: किसानों
0: यू
1: की।
0: नो ऋण मुक्ति भी हो गई है, प्लस जो जमींदारों से छुटकारा मिल गई है।
1: जी,
0: वो
1: सही
0: साथ
1: बात
0: में अगर आप बात करो तो
1: है।
0: आप और जोखिम संरक्षण वास्ते जो है वो PMFBY फसल बीमा योजना है, तो
1: सही
0: फसल
1: बात
0: बीमा
1: है।
0: योजना जो किसानों ना प्राकृतिक जो आपदाओं है या कीटों और बीमारी से जो होने वाली फसल है जो हानि है वो
1: जी
0: सुरक्षा प्रदान करे।
1: अच्छा, मैं आपको किसान भाई ये बात से सुरक्षित है कि भैया
0: बिल्कुल
1: अगर खराब हो जाए फसल तो भी घाटो को नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप और
0: क्योंकि
1: भरपाई हो जा सके।
0: हाँ बिल्कुल,
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ये जो है मतलब यह बीमे से जो है बीमे वैसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उपज और जो मौसम संबंधी नुकसान है वो ना कवर करिया करे,
1: जी बिल्कुल।
0: और वो साथ ही जो ये जो प्रीमियम दर है वो भी किफायती है, यानी किसान एक सुनिश्चित हिस्सों चुकावे जिसके मतलब खरीफ वास्ते 2% है,
1: अच्छा
0: रबी वास्ते 1.5% है, और व्यावसायिक जो फसलों वास्ते 5% है।
1: जी।
0: किसान जो है सोच समझ के जोखिम उठाने वास्ते प्रोत्साहित करे, क्योंकि इससे जो आय जो है स्थिर हो जाया करे
1: जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: आधुनिक कृषि पद्धतियों अपनाने में मदद मिले।
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल।
0: मेरे साथ में आसान कृषि ऋण वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके आप छोटी
1: जी
0: बात
1: जी
0: है
1: जी
0: KCC को,
1: क्या जी जी जी बिल्कुल।
0: तो इसु भी जो है कृषि कार्य वास्ते अल्पकालिक ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध हो
1: ये तो
0: जावे।
1: किसान भाई वास्ते वरदान है।
0: बिल्कुल, इसु जो को फसल उत्पादन है, कृषि उपकरण खरीदन और पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन एड़ा जो को अन्य संबंधित कार्य हो शामिल होया करे, और ये योजना जो उद्देश्य है कम ब्याज दर में ऋण उपलब्ध कराना,
1: जी।
0: ताकि किसानों ने जो को आपने वित्तीय आवश्यकताओं में उन्हें पूरा करने वास्ते ऋण लेना से उच्च लागत जो को है वह नहीं करनी
1: जी
0: पड़े,
1: जी सही बात है।
0: कम ब्याज रमा हुआ ना ऋण प्राप्त हो जावे।
1: मतलब लागत कम हुए और मुनाफा ज्यादा हुए,
0: बिल्कुल,
1: सही बात है।
0: उसके साथ में अगर बात करो तो सिंचाई विकास वास्ते आप बात करो तो ये वास्ते भी

0: PMKSY जी को है वो योजना है, इरो योजना और उद्देश्य यही है कि सिंचाई जी को संरचना है वो उन्नत हुए और कृषि मौजू को जल रा कुशल उपयोग है वो प्रोत्साहित कर सके।
1: जी
0: सिंचाई क्षमता और वास्तविक उपयोग रे बीच में जो को अंतर पाटनो है वो नौ गुरुवार से शुरू की गई है योजना। हर खेत नो पानी ये लक्ष्य न प्राप्त करने वास्ते जो को है विभिन्न विभागों में एकीकृत करे।
1: जी
0: जो आप बात करो नहरों चेक डैम और लिफ्ट जो को सिंचाई एवं विकास रे माध्यम से जो है ये योजना से सूखो और अनिश्चित मानसून जो को व्यापक सुरक्षा प्रदान करिया करे।
1: जी बिल्कुल
0: वे साथ आप बात करो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
1: जी जी जी
0: जो को आप ध्यान हर किसान भाई वास्ते जरूरी है कि आपको कहीं पानी री और मिट्टी री जो जांच करनी जरूरी है। बिल्कुल
1: जी बिल्कुल
0: तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तहत जो मिट्टी ने मौजूद पोषक तत्वों की जो स्थिति है उन्हें समझण वास्ते और उन्हें बेहतर फसल पैदावार और मिट्टी की स्थिरता सही उर्वरक प्रयोग करें ये वास्ते ये कार्ड जो है मदद मिलिया करे। भूमि रे मौजूद है वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करते समय और 12 महत्वपूर्ण मापदंडों और विश्लेषण करके यह योजना जो है पारंपरिक तरीके से हटके साक्ष्य आधारित कृषि और बढ़ावन कृषि बढ़ावन में सशक्त बनावे क्योंकि अपन ये कार्ड माध्यम से उठा पड़ जा सके आप मिट्टी रे मोए जो मृदा रे मोए कितनी गुणवत्ता है या कई फसल वास्ते उपयुक्त है।
1: सही
0: बिल्कुल और आप बात तो और भी कर सो लेकिन पहले आप एक और राजस्थानी लोकगीत सुन जे ताकि क्योंकि यहाँ पर किसान भाई यहाँ पर बातों से बोर नहीं हो जावे तो
1: जी बिल्कुल
0: सुन जे राजस्थानी लोकगीत और चर्चा रख सो जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
6: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे रब्बान खान पार्टी के गाए लोकगीत।

पग से पग धवती तेरी पायल घस घस जा।

हीरे मोती हद दड़ावार गले नुव सरहार मोतिया सही महंगी करा जे हवे हमारी बनारे बागम झूलो माने बनारे बागम झूला माना कारी पनी ने कारी नजू नजू।

हरियाणो रे बने गेट गजीरो रे गुलाबी गजीरो करी पनी सारे करी नजरी ले चूड़े लाल आए दो।

जोधाने थे जाई तू तन्ना रे जोधाने थे जाई तू थारी बनी सारे थारी नादुरी रे थारी नादुरी रे रखड़ी लाए दू बना दे दे दे जेठी का जीरो रे हरियालोल बने हरिये गेट का जीरो रे हरियालोल बने थारी बनी सारे थारी नादुरी रे थारी बनी सारा रखड़ी लाए दू।

之高。रुमाली जो मारे साजन जी लो दमाली साजन जी सब दिया रब सड़ लाया ओ सब दिया रब सड़ लाया सारे

म्हारे साजन दी साजन दी सबदी अरब से लाया ओ सबदी अरब से लाया।

यार दिमागा बड़ी यार झलर बना दी ओ बड़ी यार झलर लगा दी साल संभाल से लड़ी रे मगर माल बड़ी आला।

मालियो साली जी मुलाद तुर मालियो साली जी मुलाद तुर मालियो साली जी मुलाद महीना रे अतियो लगायो ओ महीना रे फवारो लगायो सारे समान से लड़ी रे मजो रुमाल बना सरलाया सारे समान से लड़ी रे मरो रुमाल भवर सरलाया हो साजन जी साजन जी सब दिया रब से लाया हो सब

एक रुमालियो सासू जी मुलायो, एक रुमाली सासू जी मुलायो, नींबू डारा जाड़खा लगाया, ओ नींबू डारा जाड़खा लगाया रे साल संभाल से लड़ी रे मजो रुमाल बढ़िया लाया, रम जम लाया, ओ चुन चुन चुन चुन लाया, हाय लड़ झड़ लाया, ओ रम जम लाया रे साथ संभाल से लड़ी रे मजो रुमाल बढ़िया लाया।

रम जम लाया, अरे चम चम चम चम लाया, ओ रुन झुन लाया, हाय लड़ झड़ लाया रे सा।

मछियो जल पियो पर नदी न कूटत नी। धर्म की आसे धन नी फूके प्रभु कह गे दास कंबीरा तेरी झूपड़ी गल कटियन के पास कंबीरा तेरी झूपड़ी अरे गल कटियन के पास ओ जो करे वही भरदा एक तू क्यों भयो।

ठगावीए प्रभु और न ठगिए को आप ठगा सुख उपजे तो और ठगा दुख हो उड़ जाना अंश अके

चेलारे गुरती तो करनी गुर ही जाने गुरती तो करनी गुर ही जाने चले करनी चेलारे चले।

पीरा कोठी काठ की चौमुख लगी आग आ सच्चे साधु रत रहे तो पूरे

तेरी माँ गेलड़ी अरे जीवन रखिया ना आ आया झूठा काल का तो कितने

que kalla juga awasi. Oh, are kambira. Ah, kalla juga awasi.

रबन खा पार्टी के गाए लोक गीतों के साथ राजस्थानी लोक संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आपने सुना ऐतराज़ फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया हिमेश रेशमिया ने।

बुलबुल के जैसी तेरी चाल है, माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है।

कुमार सानू की आवाज में है। अभी आपने सुना बरसात फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला व आखिरी गीत फिल्म धड़कन से, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे मेहंदी हसन की गाई कुछ चुनिंदा गजलों को।

श्रोताओं, मेहंदी हसन की गाई इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, उसके पश्चात न्यूज़ एट 9, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये 4 विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज

0: सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है, वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एशिया स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉप बिल नंबर 14454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ओ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक

0: प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने का है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफ कैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और

उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना दिल चाहता है फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया शंकर एहसान लॉय ने।

0: कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छन छन छुम छुम।
1: कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना दिल तो पागल है फिल्म के इस गीत को। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया उत्तम सिंह ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला व आखिरी गीत फिल्म गैंगस्टर से, जिसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत से सजाया है प्रीतम ने, आवाज है जुबिन नौडियाल की।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। रात्रि के 9:30 होने को है। आपसे कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदय कुमार दंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण यह अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकार

0: तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना ये करना ये करना ये करना, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ गई जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है विजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पर भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते। जैसे यूथ जो है या स्कूल ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जिविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा। और अब आपको ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस नहीं है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर
1: श्वेता ने झूठ बोला है? इससे ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि हमारा कॉन्टेंट स्टोरेबल करता है, हमारे जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम फिर भी कहना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के मतलब अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे, शेयर मार्केट कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीटिंग कर रहा था। जब इसकी जॉब छोड़ी श्वेता ने तो हमने सोचा कि हम एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की, स्टोरी मतलब रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ कर उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग हमारे पास थे तो ऐसे 12,000 रुपए थे, दोनों के पैसे हो गए हमारे सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया, एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कॉन्टेंट संभालूंगा और तुम पूरा पढ़ाई संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली, तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1,000 सब्सक्राइबर आ गए थे और सिर्फ 2,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब नेचुरली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहाँ पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे तो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आपके रात स्टोरी सोचते हैं हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है ये जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों ने दुखी करना चाहते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती है आसपास, अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कहीं सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उस टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं होता है कि यहाँ सफर पॉपुलर है और लोग देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे भी आ गए थे इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसा बारो करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें कहा था।
0: श्वेता एक सवाल और बनता है आपके बीच में कि आप जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इंपल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजी जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौन सी रहती थी कि तो सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू किया फ्रीलांसिंग, पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता, तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जो फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है, कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे प्रोग्राम का सुन रहे हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ जो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
0: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पर्सनल वेबसाइट है,
1: मतलब अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है।

0: जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसके लिए यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा साहब रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस
1: करते
0: हैं।
1: इंस्पिरेशन एक तो देखो हिंदी में बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है, हमें स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अब मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतर है हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है, बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
2: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था, हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, वहां पर गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं गॉडेसेस हैं, हमारे पहले टाइम पर अगर था वो मुझे तो उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ा, तो मैं क्या तो मैं खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से को थोड़ा सा ना प्रमोट करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
0: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
1: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर नहीं किया, और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और मतलब ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है,
3: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो मेन
1: बहुत ही मजेदार होता है।
3: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
2: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है, उन्हें ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें कोर के हमारे फोन नहीं होती थी, और हमारे चैनल तीन महीने में जो हमारा एक ऑनलाइन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ, उसके वीडियो क्वालिटी देख लीजिए एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेरा मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक, आपको सोना नहीं दिखाना है, हर चीज सोना नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है, तो जो हमारे पास है सबसे पहले हमें उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने गोप्रो लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब हमारे सेंट्रांस है, ये सब हमारे उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है, मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेकर चल रहा हूँ तो मिलने आसान नहीं है, तो मैंने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कैसे,
3: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
2: जितना छोटा हो सके मतलब
1: कॉम्पैक्ट रखो।
2: जो गोल है गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
3: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
1: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसकी और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी वो बहुत मजा आया था, और जो बच्चे तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
2: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
4: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है, वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है,
3: और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
5: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
5: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रखे सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए इसमें रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह की कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
5: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मींस बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट होने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे हमें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए करें पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पर ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
3: जी
5: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
3: जिनके पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें?
5: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को एनहांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज के इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं।

डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे मित्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मुकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मुकाशी।
0: स्वरों के साधारण और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मुकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द पर्स्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की अब शोभा बढ़ा चुकी है। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लिविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: Honored with several accolades, including the Kalashree and Mohammad Rafi awards, her performances are not only technically flawless but also deeply reflect the soul of Indian classical music.
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्यले तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा। और एक ताल में निबद्ध दूत रचना की बोल है मानो न ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। The first is Vilambit composition set to Ektal with the lyrics Maan Taj Deho Pyare. This is followed by a Madhyalay composition set to Teental with the lyrics Mano Na Jira Mora. She concludes this rag with a Drut composition set to Ektal with the lyrics Mano Na Hi Tumri Baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Bhavakar.

0: थे विदुषी स्मिता काशी का गायन राध मार बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राध रागेश्री त्रेताल मध्यान निबद्ध रचना की बोल है साजन दे सोनी एरी आली और जत एकता में निबद्ध बंदिश की बोल है राग संग रागिनी बोल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री बैकग्राउंड विदुषी स्मिता मुकाशी रंगरंग राग और विभाग स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट ऑफ त्रिताल विद द लिरिक्स साजन दिन सोनी एरी आली दिस विल बी फॉलोड बाय द बंदिश सेट ऑफ एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: यदुषी स्मितावकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यह रंग विस्तार था राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय यदुषी स्मितावकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वाज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वाज प्रमोद बोरगांवकर।
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।